रोजा फिल्म से ये गीत आपने सुना, मिनमिने का गाया हुआ। दोस्तों, वाकई में ही छोटी छोटी आशाओं में कितने सपने छिपे होते हैं, और ये सपने जब पूरे हो जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो हमने अंबर को छू लिया हो या फिर कोई मकाम हासिल कर लिया हो।

कोहरा फिल्म से गीत आपने सुना हेमंत कुमार का गाया हुआ, कैफी आसमी के बोल थे और हेमंत कुमार का संकेत।

दोस्तों, अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ परवरिश फिल्म से। आशा भोंसले का गाया हुआ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और धुन तैयार की है दत्ताराम वाडेकर ने।

दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम में अब अगला और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम साथ साथ हैं फिल्म से लिया है, प्रतिमा राव हरिहरन घनश्याम वासवानी का गाया हुआ, रविंद्र रावल की रचना है और राम लक्ष्मण का संगीत। दोस्तों, इस गीत के लिए कहना पड़ेगा कि माता पिता इस धरती पर ईश्वर का सबसे अनमोल रिश्ता है। उनका रिश्ता निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की ऐसी नींव होती है जिस पर इंसान का जीवन खड़ा होता है। वे हमें चलना सिखाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। कितनी तकलीफें सहन करते होंगे जब हमें खुशी देते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उस रिश्ते में आता है, तब उसे उन रिश्तों की समझ आती है।

0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर समिन वलियो प्रोग्राम ने आगाज करो तो बोजो सुभोगाही
1: प्रोग्राम सुभोगाही बोजन वेल सरी सामीन कीर्तन सानी तरफ माई बर सलाम कबूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम किस आगाज अंदर बोजो कुरान करीम चन यमन केचन आयात मुबारकन हिस तिलावत तर्जुमा।

नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्नानं संसारमलनाशनं गीतास्विगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायनीं अम्बत्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरिओं तत्सत्।

0: गणपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चनप्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परम् उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्यसचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 जनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 30

0: वे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honour of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi

0: आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
6: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें, पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
5: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
6: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: पे आज बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है।
1: बिल्कुल
0: आज हमारे बच्चे जो है हमारे घर में है, जहाँ हमें खुशी होगी और हमारे बच्चे जो है एक्साइटमेंट में होंगे, वहीं पेरेंट्स जो है ना बड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बच्चे कित पढ़ करो हैंडल।
1: हैंडल
0: ये
1: बिल्कुल
0: बहुत खूबसूरत नन्हे मुन्ने फूल है, इनको हैंडल करना इतना अगर आसान नहीं लगता है तो इतना मुश्किल भी नहीं है,
1: सही
0: अगर हम
1: सही
0: छोटे छोटे
1: सही
0: ट्रिक्स का
1: कहा।
0: इस्तेमाल करेंगे। करेंगे आज छोटे छोटे बच्चों की बात और अपने घर के सुकून की बात, घर के माहौल की बात, लेकिन पहले आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का।
1: एक नाट्य कलाम से
0: बिल्कुल

0: साथ मिलकर हम भी थोड़ा बच्चा बन जाए,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: कैसे हम इनकी बोरियत वाले जुमलों को, जैसे आपने कहा कि एडवेंचर में बदले, तो आज हम ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे में एक सुपर हीरो छुपा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। ये बच्चा बड़ा नॉटी है, ये बड़ा परेशान करता है, असली छुन सु परेशान करा तेमिस अगर शासन तेम सलाई ते तेम क्वालिटीज इम नेवर यसान छ। और अब बच्चों के सामने ना ऐसी चीजें नहीं होती कि वो प्रॉपर वे में हमें बता दें या शो करें, ये हमारा काम है कि उनकी सलाहियतों को हम प्रॉपरली कैसे बाहर निकालें।
1: बिल्कुल तस्लीमा, बच्चों की गर्मी की छुट्टी में जब वो पूरा दिन घर पर होते हैं तो इनकी तवानाई भरे मिजाज को संभालना और इनका दिन एक निज़ाम, जी हाँ, एक नज्म ज़ब्त के साथ गुजारना वालदेन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस दौरानियों को खुशगवार और कार आमद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: हमें दिन का एक खाका, डेली रूटीन तय करना चाहिए। छुट्टियों का मतलब कायदगी नहीं होना चाहिए, लाइक हम असूल अपने जो हैं वो तो हमें अपने रूल्स रेगुलेशंस उन पे थोपते हैं हमेशा, बट बच्चों को ना एक लचकदार लेकिन वाजा रूटीन बना कर दे।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, लेकिन सख्तगीर बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुबह उठाने का एक मुनासिब वक्त दे, लेकिन उसमें कुछ छूट भी रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। दिन को हम कहते हैं कि दिन को तीन हिस्सों में तकसीम करें, सीखने का वक्त या मुतालाया या हुनर,
0: बिल्कुल,
1: दूसरा जिस्मानी सरगर्मी, खेल कूद भी जरूरी है बच्चे के लिए, और तख्लीकी वक्त, आर्ट या फारिक वक्त।
0: अक्सर वालिदैन बच्चों को हर वक्त मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि थोड़ी बहुत बोरियत बच्चों के जहन को तख्लीकी बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: जब वो बोर हों तो उन्हें ये कहने के बजाय कि मोबाइल देख लो, उन्हें कुछ बुनियादी सामान दे, जैसे ड्राइंग शीट्स, ब्लॉक्स या किचन के बर्तन।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें खुद कुछ नया सोचने का मौका दें। स्क्रीन टाइम का उसूल, स्क्रीन के सामने गुजारे जाने वाले वक्त पर पाबंदी लाजमी है, स्क्रीन टाइम को इनकी अच्छी कारकर्दगी से जोड़ें।
0: हाँ, जैसे कि अगर उन्होंने किताब का एक लेसन पढ़ा, या कमरा साफ किया, तभी उन्हें गेम खेलने की इजाजत दें। और मवाद का इंतखाब भी करना जरूरी है। जी हाँ, उन्हें कार्टून्स के बजाय मालूमाती वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज जो है दिखाने की आदत डालें। एक तो उनका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, उनको अच्छा भी लगेगा, और दूसरा उनकी मालूमात में भी इजाफा होता रहेगा, और वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती।
1: बिल्कुल। साथ ही साथ बच्चों को घर के कामों में शामिल करना, उन्हें जिम्मेदार बनाना और आपका बोझ भी कम करता है।
0: बिल्कुल, ऐसे हम उनको जिम्मेदार बना सकते हैं। और क्या कुछ कर सकते हैं, हमें कैसे डील करना है नन्हे मुन्ने फरिश्तों को जो कभी कभी बड़ी बड़ी बदमाशियां भी करते हैं और हमको बहुत परेशान भी करते हैं, इनके साथ हमें कैसे रहना और इनका ये टाइम हम कैसे खूबसूरत बनाएंगे, इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक नगमा।

चीन में पुर से भेज दूं तुमको चीन में, जो बजाऊं मैं अपनी बीन को चॉकलेट कर दूं जमीन को। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात।

चारों भूत रुस्तम के पुत थे। मेरे भूतों से जीते जंग जो उसका ब्याह शहजादी संग हो। ओ बच्चों समझे, मेरे काबू में चार भूत हैं, चारों भूत रुस्तम के पुत थे। मेरे भूतों से जीते जंग जो उसका ब्याह शहजादी संग हो। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो।

0: लाइव शो पैम सुबह, आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। आज हम आपके साथ हैं, मैं हूं आपका मेज़बान मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
1: तस्लीमा, और हम बात करें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के। नन्हे मुन्ने बच्चों की छुट्टियां हुई हैं स्कूल में और अब ये बिल्कुल 14 दिन तक हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, जो बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है और बहुत ही खूबसूरत बात भी है। लेकिन बहुत ही इसमें बहुत लोग इनफैक्ट हम सब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी तवानाई, उनकी ताकत, उनका जो जज्बा जोश है वो बिल्कुल अलग एक चीज़ है, और उनका सीखने की जो मतलब चाहत होती है वो कभी कभी आप लोगों को परेशान करती है, हम लोगों को परेशान करती है, क्योंकि ये हमेशा उड़ते रहते हैं परिंदों की तरह, क्योंकि अभी इनके पास पर है उड़ने के लिए, जज्बा है, जानने की तलाश है इनके अंदर। तो हमें इनके साथ अपनी लेवल जो है वो स्पीड अपनी इनके साथ मैच्योर करनी है, उनके साथ मिलानी है, उनके साथ रहना और उनको ये कंफर्ट देना है कि वो अगर घर में है, अगर वो कुछ करते हैं तो वो सही ट्रैक पे हमें लाना भी है, और उन्हें ये भी फील करवाना है कि वो सही है। क्योंकि हम बच्चे को हमेशा बोलते हैं चुचू गलत कर रहा है, सकुरु दित पर गलत, ये बच्चा डिप्रेस हो जाता है, इच माना बगैर शो सॉरी गलती होत करा, और इसीलिए
0: स्पेसिफिक सोसल दुनो
1: हम मैच्योर है, हम एडल्ट्स हैं। मैं आप सबसे कहना चाहते हैं, अच्छे बर्ड अच्छे पता अच्छे ये बचपन ते वो चमत अच्छे तात दौरस मजा में अपना वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी आर एडल्ट्स।
0: तस्लीम हमने बात की कि बच्चों को जिम्मेदारी दी इस फ्री टाइम में,
1: मैं वही कह रही हूँ कि हम एडल्ट्स हैं, हम जानते हैं सारी चीजों को, लेकिन ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाना है।
0: बिल्कुल, हमें ऐसा नहीं करना है कि इनको छोड़ना, बस जहाँ जाओ
1: मेरे बहुत सारे काम है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, पानी स्पीड स्पीड से मैच करन ताकि ये महकन तो हम बात ना बनिया चाहते वही कर ऐसे कहा मेरा सब बनकर कहा कि ये मंदी लक्ष्य लक्ष्य जिम्मेदारी, इनको सच में जिम्मेदारियां दे दें आप, लाइक कैसे ऐसे नहीं इनको बोझ लगे कि इसके रिक बांध, ना ना बड़े प्यार से बच्चे को बोलिए जाइए किसी पौधे को पानी देने की जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको बोलिए गस कुलंतराव आप खुद पोष कुलस्त्राव, किसी को मेज सजाने की जिम्मेदारी दो, और किसी बच्चे को अपने खिलौने तरतीब से रखने की दावत दे सकते हैं आप, और किसी बच्चे को बोल सकते हैं
0: किचन की सरगर्मी में इन्वॉल्व करें,
1: या पहले अपना वार्डरूम सेट करो, अपने कपड़ों को सेट करो, अपने जूतों को सेट करो, अपना देखो अपना सारा सिस्टम ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप उनके पास ये हदफ भी रख सकते हैं, अगर आपने ये काम किया तो फिर हम अपना 5-10 मिनट इस गेम के साथ भी स्पेंड करेंगे।
0: बच्चों को साथ मिलाकर सैंडविच बनाना या सलाद काटना या बड़ों की निगरानी में सिखाएं, ये उन्हें बहुत पसंद आता है,
1: और ये पसंद आने के साथ साथ उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटीज बनेगी जो आपके करीब उनको करेगी, और वो आपके काम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या करते रहते हैं, और इसके साथ साथ उनके अंदर ये सीखने की सलाहियत भी आएगी।
0: जी तस्लीमा, छुट्टियों के तवील दौरानिये में बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
1: हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इनके जज्बात को समझने की जरूरत है और इनसे बातचीत करने की

0: जरूरत है, इनकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, अगर बच्चा कोई काम वक्त पर मुकम्मल करे या अच्छा रवैया अपनाए तो इसकी तारीफ करें।
0: तारीफ करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस बच्चे में हौसला पैदा होता है, इसको अच्छा लगता है, यू शुड नॉट डिसअपॉइंट गसान किहीन एम सुन अंदर यूस सलायत होस तो छु सुचो वार बड़ान एम सेत यल तु एम सिन तारीफ छु करा यू शुड तुस दह कत बेई बर्दाश्त करा बेई बोजान इसका इंटरेस्ट आप में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये छोटी सी हौसला अफजाई उन्हें अच्छा काम जारी रखने पर उकसाती है।
0: बिल्कुल, याद रखें बच्चों के साथ घर में रहते हुए आपका जो तहम्मुल है ना, पेशेंस है, वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पुरसकून रहेंगे तो घर का माहौल भी पुरसकून रहेगा और आपका बच्चा भी कीनली रीड करेगा ये सारी चीज़ें और धीरे धीरे उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। अगर आप बोलते रहेंगे तो वो एक कान से सुनता रहेगा, दूसरे कान से निकालता रहेगा। इसलिए प्रैक्टिकली आप उनके साथ अगर ये सब करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे उनके सिस्टम में ये फीड होता रहेगा और आपका बच्चा इस तरह से आपके काफी क्लोज आएगा और आप उन्हें काम उनसे करवाए, छोटी हेल्प आपको भी होगी और वो भी इन सब चीजों से, मतलब इन सब चीजों से जब आशना होंगे तो उनमें भी ये आदतें ये डेवलप हो जाएंगी, ये क्रिएट हो जाएंगी ये आदतें, गुड हैबिट्स, और इससे वो आप जो जिस चीज़ से आपको सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि सन बच्चे सिर्फ फ़ोन बुझान, आप देखेंगे धीरे धीरे वो इस फ़ोन से कितना डिटैच होंगे। लेकिन ज़रूरत है जैसे कि मिराज ने बोला, बच्चन जो तारीफ करें उनको अप्रिशिएट करना है, उनका हौसला बढ़ाना है, ना कि उनकी गलती पे चीखना चिलाना या डांट डपट करना, इससे बच्चा आपसे बहुत दूर हो जाता है।
1: तस्लीमा, ये बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल एक नगमा सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

165 प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। आज के प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। मुकर्रर है मौलाना फयाज अहमद ज़रू और इस प्रोग्राम के पेशकार है सलीम एजाज कपरा।

0: आज की सुर्खियां आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10 बजे पेश होता है प्रोग्राम सूफी सदा। आज के प्रोग्राम का मौजू है मसनवी गुलो सुनो बरच वजाहत तसव्वुफ। मेहमान हैं खुर्शीद जरगर इबन अहद जरगर। प्रोग्राम के मेज़बान हैं गुलाम रसूल आखून। इंटरैक्टिव लाइव शो सुबह 10:30 पर पेश होगा। आज के इस शो के मेहमान हैं प्रोफेसर और XHOD पेडियाट्रिक सर्जरी सिकिम्स डॉक्टर निसार अहमद भट्ट। इनसे बात करेंगे हमारे साथी तस्लीमा। मोहम्मद यूसुफ बेग और साथी सुफियाना मौसीकी में मकामी माज पेश करेंगे सुबह 11:30 पर और मकामी रिहावी दिन में 2:30 पर। चंद फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 12:10 पर। बज़्म-ए निस्वां प्रोग्राम पेश होगा 12:40 पर। इसमें प्रोग्राम के मेहमान शफकत ककरू के साथ बातचीत करेंगी, मेज़बान रूबी निसा खान। दिन में 1:10 पर NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा उमंग। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे नश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश होगा 4:30 पर, पेश करेंगी मनमीत कौर। गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे नश होता है। शाम 6:05 पर गर्मी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा जून ऋषि चौक के बलकोपवाड़ा में तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम भी शामिल है। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहर बीन नश होगा शाम 7 बजे। वादी की आवाज़ प्रोग्राम रात 8 बजे और रात 8:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। सामीन ये थी तफसील आपके बाद आज हमारे यहाँ से नश्र होने वाले बाकी प्रोग्रामों की। लाइव शो पायम सुबह जारी हैं, सुबह के 8:00। अब आइए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप खबरें सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम।

0: मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं।

0: का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका

0: को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान मेराजुद्दीन और आज मेरे साथ है
3: तस्लीमा।
2: जी तस्लीमा, आज 7 जुलाई है
3: जी।
2: तारीख के अवराक पलटते हैं और देखते हैं आज के दिन तारीख में कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए हैं।
3: जी बिल्कुल, पलटते हैं। अगर आज की बात करें 7 जुलाई की, आज ही के दिन 1998 में सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर सलामी जोड़ी ने एक रोजा बैन अक्वामी क्रिकेट में 252 रन की इफ्तिताही पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
2: जी सन 2005 में लंदन के ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर भीड़भाड़ के अवकात में हुए 7 सिलसिलेवार बम धमाकों में कम अज़ कम 45 लोग हलाक और 1000 दीगर जख्मी हो गए।
3: आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 2011 ईस्वी में हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी फिल्म हैरी पॉटर और डेथली हैलोज पार्ट 2 का लंदन में प्रीमियर हुआ।
2: 7 जुलाई 2012 ईस्वी को आज ही के दिन रूस में शदीद सैलाब से 140 افراد ہلاک ہوئے۔

0: और सन 2013 में आज ही के दिन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा कर एंडी मरे साल 1936 के बाद इस खिताब पर कब्जा जमाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने।
1: मुंबई के वाटसन होटल में फ्रांस की ल्यूमर की टीमों ने पहली सिनेमाटोग्राफिक फिल्म की नुमाइश की, जिसके साथ हिंदुस्तान में सिनेमा का आगाज हुआ। तारीख थी आज यानी 7 जुलाई।
0: आज ही के दिन 7 जुलाई यानी 1898 ईस्वी में अमेरिका ने हवाई पर कब्जा किया। और आज ही के दिन 1913 ईस्वी में बरतानवी पार्लियामेंट ने क्वायरिश होम रूल कानून को मंजूरी दी।
1: जनूबी अफ्रीका ने आज ही के दिन सन 1925 ईस्वी में सेनेट ने, जी हाँ, जनूबी अफ्रीका सेनेट ने नस्ली इम्तियाज कानून को ठुकरा दिया।
0: और आज ही के दिन 1973 में इराक में 25 अफराद को हुकूमत का तख्ता पलटने के जुर्म में मौत की सजा दी गई।
1: सोलोमन जजीरे ने बरतानिया से आजादी हासिल करने का ऐलान किया आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को सन 1978 ईस्वी को।
0: आज ही के दिन 1979 में सोवियत यूनियन ने मशरकी काजक में जौहरी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन 1999 में बर्मा में हजारों लोगों ने मार्शल लॉ के खिलाफ वर्जी करके रैली में हिस्सा लिया।
1: 1991 ईस्वी को आज ही के दिन उर्दुन के शाह हुसैन ने मार्शल लॉ के तमाम कवानीन वापस ले लिए।
0: और आज ही के दिन 1992 में रूसी सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ समाज शुरू की।
1: इस पर हम मजीद बात करेंगे, पहले सुनते हैं एक नगमा।

0: जी हाँ दोस्तों, लाइव शो लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। आज 7 जुलाई है। आज का दिन तवारीख के आईने में इस बारे में हमने बात की। अब उन शख्सियत का जिक्र करते हैं जो आज के दिन पैदा हुई हैं। जी तस्लिमा
1: जी, हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी जो है 7 जुलाई यानी आज ही के दिन 1981 को पैदा हुए। हिंदुस्तानी क्रिकेट में उनकी खिदमत और ख़ास तौर पर 2007 और 2011 के आलमी टूर्नामेंट्स में उनकी क़यादत को हमेशा याद रखा जाएगा।
0: जी, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने वाले एक अजीम इनकलाबी सहाफ़ी और मुफक्किर मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 1854 को पैदा हुए।
1: आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी उर्दू जुबान के मशहूर मारूफ शायर और माहिर तालीम आज ही के दिन पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल, अब उन शख्सियात का जिक्र करते हैं जो आज के दिन इंतकाल कर गए। कारगिल जंग के दौरान कैप्टन विक्रम बात्रा ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए आज ही के दिन जाम शहादत नोश किया। उन्हें बाद अज वफात भारत का आला तरीन फौजी एजाज परमवीर चक्र दिया गया। इनका मशहूर नारा ये दिल मांगे मोर आज भी याद किया जाता है। आज ही के दिन
1: बिल्कुल
0: जी हां, मुमताज सिख मुजाहिद और आजादी के अलमबरदार भाई महाराज सिंह का सिंगापुर में इंतकाल हुआ है। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सिख मजहमती तहरीक में अहम किरदार अदा किया।
1: आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 2021 दिलीप कुमार का भी इंतकाल हुआ है। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम अदाकार जिन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, इनका आज ही के दिन 2021 में इंतकाल हुआ।
0: तो समीन, ये था आज का दिन तारीख के आईने में।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।

0: इस वक्त आप लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह सुन रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मेराजुद्दीन और आज मेरे साथ हैं
1: तस्लीमा अख्तर। आपके साथ बहुत सारी बातें की, ढेर सारी बातें की और कोशिश कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में आप तक प्यारे प्यारे नगमे पहुंचाएं। कुछ ऐसी बातें जो आपकी भी हैं और हमारी भी हैं और म्यूचुअली हम बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। फिलहाल खबरों का वक्त हो रहा है मेराज।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, सुनवाते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 गोल

0: से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं, ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला 2-तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियार में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत के सूलियाबियों का जिक्र कर

0: ते हुए कहा कि एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्ज़ाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोक कर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है जहां लोनावाला में 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرے کے باعث کئی سڑکوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد سیاحتی مقامات کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے.

0: नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमुई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। इशो आकाशवाणी हम श्रीनगर स्टेशन।
4: समीन पेश खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम चु तहतम वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: समय तो इस 65 प्रोग्राम बोजान हम सफर, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: समीन, आज मंगलवार है, साल 2026 के जुलाई महीने की 7 तारीख, मुताबिक 21 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी। श्रीनगर से आज शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मेराजुद्दीन और मेरे साथ हैं
3: तस्लीम अख्तर।
0: समीन, आगाज करते हैं आज के अखबार में शामिल अहम खबरों की सुर्खियों से। लोक भवन में एक तकरीब मुनक़द, कश्मीर वेमेनज ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप हासिल करने वाली 32 बासलाहियत खवातीन एजाजात से सरफराज। बासलाहियत खवातीन जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीली का हकीकी मजहर, नामुमकिन को मुमकिन बनाकर बासलाहियत व बाहिम्मत खवातीन ने साबित किया है कि अज़्म मुसम्मम के सामने कोई भी रुकावट नहीं टिक सकती। मनोज सिन्हा, कहा इंतजामिया खवातीन की खुद मुख्तारी, उनकी इक्तिसादी आज़ादी और क़यादत के शोबों में फ़आल शराकत दारी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म।
3: मेरे पास एक उर्दू अखबार है, इसकी शे सुर्खी है, बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जदीद

0: Payame sub.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
0: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।

0: SWR PVC pipes and fittings. जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC pipes and fittings. बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC pipes and fittings.
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS voice stabilizers. Power fluctuation sorted. Long life for your appliances guaranteed. BS voice, that's best service. Call now 9419001960.
2: सूफी सदा यह प्रोग्राम प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे तक नश्र सप्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

0: डॉक्टर साहब, इस नगमे के बाद वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें ये बताएं, ये जो बच्चों का ट्रॉमा है ना, इस बच्चों के इस ट्रॉमे के बारे में हम बता दें, क्योंकि वक्त हमारे पास अब थोड़ा सा है।
1: जी जी एक्चुअली उस

0: سمعین محترم، تُہۍ ٲسوٕ صوفیان موسیقی بوزان؟ صداکار ٲس محمد یوسف بیگ تِہنٛدۍ سٲتھی، یِمن نِش بوٗزِو تُہۍ مقامِ ماج. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، دن کے 12 بجنے والے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد آکاش وانی دلی سے انگریزی اور ہندی خبروں کا بلٹن سماعت کرتا ہے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है. जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे. दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है.
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है. भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा. श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया. उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया. इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है. उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की. डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है. 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की

जी समय आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुनता है, यह है फिल्म दुश्मन।

जी समीन, अब ये अनुराधा पौडवाल को सुनता है। यह फिल्म दिल है कि मानता नहीं।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम पर 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दो और उसके फौरन बाद कश्मीरी मैच।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ सदारती महल में दो तरफा मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहिमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के मफाहमत नामे तय किए गए। इससे कबल सदारती महल में वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इंडोनेशिया के पार्लियामेंट का दौरा करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान पार्लियामानी अहमियत को उजागर करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ख्वातीन में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। कल लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस चैलेंज से निमटने के लिए जामे लाही अमल तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। मनोज सिन्हा ने इस बिदत की बुनियादी वजूहात का पता लगाने की ताकीद की ताकि इसका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके।
1: एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, फेलोज ने कई विषयों पर काम किया है। अभी नशा के खिलाफ जो अभियान चला, मुझे लगता है कि कुछ फेलोज इस पर भी काम करें कि हमारी बच्चियां या बहनें जो नशे के शिकार हैं, रीजन वाइज नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कारण क्या है, क्यों उधर जा रही हैं, ये स्टडी मुझे लगता है कि उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में बहुत मदद करेगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर कुछ बहनें अगर काम करेंगी तो भविष्य में इसका काफी लाभ मिलने वाला है।
0: जम्मू कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का एक वफद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुआ। मुलाकात के दौरान वफद ने उन्हें पंजाब में लाइव स्टॉक लाने वाली गाड़ियों की नकलो हमल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वफद ने वज़ीर आला से इस बारे में उनकी ज़ाती मुदाखलत तलब की। वज़ीर आला ने वफद को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए नीज ताजरों और सार्फीन के मफादात के तहफ़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद जल्द ही पंजाब का दौरा करेगा ताकि तमाम मसाइल का हल तलाश किया जा सके। मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद ने कल ज़रात के वज़ीर जावेद अहमद डार के साथ सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में मुलाकात की। वफूद ने अपने मुतालबात और तरक्याती ज़रूरियात वज़ीर की दानिश में लाए। जावेद अहमद डार ने अवामी मसाइल का जायज़ा लेने की मुतलिका अफसरान को हिदायत दी ताकि उनका इजाला मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी सरकार की तरजीहात में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने साल 2026-27 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत तश्कील दी गई स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत करते हुए आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तरतीब दिए गए मंसूबों का जायजा लिया। कमेटी ने जम्मू कश्मीर में 2025 के दौरान पेश आई कुदरती आफात के नतीजे में अवामी इमलाक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7,51,46,00,000 रुपये की रकम को मंजूरी दी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा के पहले चार दिनों के दौरान लगभग 79,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासना आज सुबह 10 बजे तक 6,745 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 8,845 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। उनमें से 3,989 यात्री बालतल जबकि 4,826 यात्री पहलगाम के रास्ते श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंच रहे हैं। ये यात्री सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच 363 छोटी बड़ी गाड़ियों में जम्मू से श्रीनगर का सफर कर रहे हैं। अदालती उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के

0: बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तसरफ के लिए जवाबित में तरमीम की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान असम्बली को मुहल्लिक बीमारियों में मुबतला मुस्तहिक मरीजों के लिए एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च करने का इख्तियार दिया गया है। हुक्मनामे में मुस्तहिक मरीजों के लिए शराइत वजह किए गए हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी होगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 1.04 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को 93 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के साथ जोड़ा गया है। इस पहल को डिजिटल पब्लिक हेल्थ निज़ाम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। इस निज़ाम की बदौलत मरीजों को डिजिटल हेल्थ खिदमात एक ही प्लेटफार्म पर दस्तियाब हो रही है। श्रीनगर में हालिया दिनों मुनक़द की गई पहली कश्मीर चैंपियंस फुटबॉल लीग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इस खेल सरगर्मी की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर की खेल शोबे की तारीख में एक नया बाब रकम किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, यह छे आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुंद बुलेटिन हेत छुस बे मोहम्मद सादिक लोन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोर जकार्ता मज़ इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सुबियांतो सत सदारती महलस मज़ दोतरफ़ा मुलाकात। दुशवे लीडरों कोर पानवे दिलचस्पी हिंदन कहियान मामलन पे तबोदले ख्याल। अत मौक़स पे आए दुशवे मुल्कन दरमियान मुख्तलिफ शोबन मज़ शिरकत मजीद वसवार बनाने के मुफाहमत नामा तय करने। अम ब्रोह आव सदारती महलस मज़ वज़ीर आज़म शानदार इस्तक़बाल करने। वज़ीर आज़म करन इंडोनेशिया के पार्लियामेंट दौरे यम सत दोनवे मुल्कन दरमियान पार्लियामानी अहमियत नुमाया सपदे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान चु जनानन मज नशे करन रुझान बढ़नेस पे तशवीश बोमुत। रात लोक भवन श्रीनगर अकिस तकरीबी खताब करा कोर तिमो बांध बांध जी अमी चैलेंज मुकाबल करन खातर गसे लाए है अमल तरतीब दिन युन। मनोज सिन्हान कोर तहकी जी अमी बिद किन बुनियादी वजूहातन हुंद गसे पाई कड़न युन युत जन ये मुल मज खत्म करन हेकी यत।
2: एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, फेलोज ने कई विषयों पर काम किया है। अभी नशा के खिलाफ जो अभियान चला, मुझे लगता है कि कुछ फेलोज इस पर भी काम करें कि हमारी बच्चियां या बहनें जो नशे के शिकार हैं, रीजन वाइज नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कारण क्या है, क्यों उधर जा रही हैं, ये स्टडी मुझे लगता है कि उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में बहुत मदद करेगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर कुछ बहनें अगर काम करेंगी तो भविष्य में इसका काफी लाभ मिलने वाला है।
1: मटन डीलर्स एसोसिएशन अख वफद समख्यो वजीर आलम उमर अब्दुल्ला तरह तम पंजाब पे लाइफ स्टाक सारन वाजन गाड़ियन बुथि मुश्किलों निश जनयाब। वफदन वन वजीर आला जी अत सिलसिलस मज करन तम जदी तौर मुदाखलत। वजीर आला दूत वफदस यकीन जो सरकार से मसल अंजरान तो बापारन तो सर्फन हंद मफाद रसरान खुद वादबंद। तम वन जकूमत कन सीनियर अफसरन हंद वफद कर जल्दी पंजाब दौरे युत जन सारी मसल अंजरान यथ हकन। मुख्तलिफ इलाकों पे आमतों कहियाव अवमी वफदों को रात सिविल सेक्रेटेट श्रीनगर ज़रात किस वजीर जावेद अहमद डारस सत मुलाकात तो अनक पन मुतालब तो तरकियती जरूर तिज नोटस मज। जावेद अहमद डारन दी मुतल अफसरन यमन अवमी मसलन सामने हिदायत युत जन अंजरान यथ हकन। तमो वन जूकन राहत वातन सरकार चन तरजीहत मज शामिल। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलवन हूत वरी जतवह बापत डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तहत बनाने आमच स्टेट एग्जेक्टिव कमेटी हिंज दोमी मीटिंग सदारत करान आफातों किन पद सपदमित सूरत हाल मुकाबल करने खुद तरतीब दिन आमच मनसूबन हूं जायजे। कमेटी कौर जम्मू कश्मीर मज जुस दौरान पेश आमचो कुदरती आफतों किन लूकन हंदिस मालस वोतमुत नुकसान पुरुन खुद 7,51 करोड़ तो 40 लाख रोपिन रकम मंजूर। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से दोशवे वतो पहलगाम तो बालतल किन खुश उसलूबी सान जारी। यात्रा हिंदन गोडनिकन चौन दोहन दौरान अलपल कुनशीत सास यात्रियों पवित्र गुफाई में शिवलिंग मुख दर्शन कोरमुत। अ दौरान जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप पे 8,815 यात्रियों हूं ब्या कफिल आज सुबह वादी कुन रवाना सपदमुत। सैन नुमाइंद खुर्शीद पडरोन खबर सोजम यह यात्रा बापत जम्मू पे रवाना सपदन वोल वनुक ताम सारे खुद बोड कफिल। जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप पे सपद आज सुबह 8,815 यात्रियों हूं ब्या कफिल वादी कुन रवाना। यमो मज 3,909 यात्री बालतल ये जन 4,800 यात्री पहलगाम च वति श्री अमरनाथ गुफाई कुन पकान। यम यात्री से सख हिफाजती इंतजाम तहत 363 लोकच बड़ी गाड़ियन के जम्मू पे श्रीनगर कुन पकान। अदालती उजमा की हिदायत तहत यह श्री अमरनाथ जी यात्रा पे इन वाली यात्रियों हूं ज्यादा खुद ज्यादा तदाद गोड़े तय कर आमुत। यमो श्रद्धालुओं एडवांस रजिस्ट्रेशन छन करम तिम आमुत तम ग तत्काल सहूलियत फायदे तुल पन रजिस्ट्रेशन करने पत जम्मू कश्मीर इन अकि सरकारी बयान मज वन आमुत रजिस्ट्रेशन।

0: تَتھ گَرَس چھِ گُل تہٕ گُلزار پھلان. یِتھَے کٔنۍ چھُ سوسایٹی منٛز تہِ ٹیٖم ؤرٕک چھُ واریاہ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ برونٛہہ کَنۍ چھِ کۭتیٛاہ خوٗبصوٗرت پَشمیٖن شال, جاماوار شال, تِلہٕ شال, تُہۍ وٕچھِو تِم کِتھ کٔنۍ چھِ بَنان. یا کارپیٹٕچ کَتھ کَرو, سُہ چھُ سِنٛگٕل تھرٛیڈ سۭتۍ, چھُنہ وَنان سُہ اَکھ اَکھ کَترے کَترے سۭتۍ سَمنٛدَر
1: سَمنٛدَر
0: سُہ آسان اَکھ اَکھ ویٖو اَکھ اَکھ تھرٛیڈ, اَدٕ چھُ سُہ بیوٗٹِفاے گٔژھِتھ پَتہٕ اَکھ خوٗبصوٗرت شال بَنان.
1: خوٗبصوٗرت ماشاء اللہ, دِل چھُ کران کہِ بوزان روزہو, مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان کہِ أسۍ کرو یہِ اِلابریٹ, تہٕ أزکِس ہیٚمو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت. اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ یِمن سۭتۍ.
2: آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں پرینکا اروڑا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए. प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है.
3: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है. हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी.
3: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है. हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा.
2: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया. उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे. श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है. भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा. इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके. प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
0: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
0: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
0: जी।

0: हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल।
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: Papa, Kaira ka ye hawaii adda kitna shandar hai.
2: हाँ बेटा.
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे.
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे. अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते.
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं. याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे.
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे. याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था.
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा.
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी.
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया. उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं. आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी.
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो. और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल.
1: अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है. चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो.
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो. आओ
4: आओ, चलो
2: आओ.

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: नादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?

0: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
1: ओह शुक्रिया। मिस्र की तीन खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
0: हाँ। अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा। हाँ। अब गप और हो जाए।
1: हा? इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।
2: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
0: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
2: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
2: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
0: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
0: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
2: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
2: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
0: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
2: बुरी बात है।
0: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
2: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
0: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
2: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
0: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहाँ क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहली बूझ दो।

0: तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: आप समाप्त कर रहे थे NCERT द्वारा तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग। यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
6: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
7: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
8: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर्स से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
7: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
8: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेशनल का। खबरों का जरा सा इंतजार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग अदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरैन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नोटिंगम में तीसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफद की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनअती इश्तराक को वसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है, जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की UPI जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मरबूत हो जाएगी, जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम परम्बनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
1: हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर

0: प्राबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज़ भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकतदारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के तआवुन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग आदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोगजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाके पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहिर अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलाक्वामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमत नामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बितंग आदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमई। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

سوين وترم تس سوفيان ماسكي بوزان سدا كارس محمد يوسف بيك دين ساتي يمنش بوزوتي مقام رحاوي आवाज है आकाशवाणी श्रीनगर की। मीडियम भी 268.6 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सफर के 3 बज चुके हैं। पेश खिदमत है फौजी बहन के लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

फौज गायो फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म कामचोर के इस नगमे से, जिसे गाए हैं किशोर कुमार।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। अब आइए कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अजीज को सुनते हैं। यह है फिल्म खुदा गवाह, लक्ष्मीकांत बेरेलाल की मौसिकी और आनंद बख्शी का लिखा नगमा।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का अगला नगमा सुनते हैं फिल्म समझौता से, आवाज किशोर कुमार की। इस नगमे को तहरीर किया है इंदिवर ने और मौसिकी से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जारी हैं। पहले ही पैगाम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चले, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें डीटीएच या एआईआर लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। जी दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, आवाज आशा भोसले की।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये नगमा सुनते हैं। आवाज हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है डोली।

जी दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हो रहे हैं। आइए अब उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर के माबैन वफद की सतह की बातचीत। वज़ीर आज़म इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से सरफराज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ठाठरी डोड़ा में बादल फटने से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासरीन को फौरी रिलीफ वागुजार करने की हिदायत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इदारा जाती इस्लाहात आला मयार की तरबियत और इख्तियारियत को फरोग देने पर जोर और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसन तरीके पर जारी। 5 दिनों में 1,00,000 यात्रियों के पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन।

31 टनल, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क राबतों को दवाम बख्शने के लिए दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों समेत दीगर फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की बदौलत खितों में के दरमियान राबता मुस्तहकम होने के साथ साथ मुल्क के तरक्याती अमल को भी दवाम हासिल हुआ है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत कन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे पर मबनी तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। उन्होंने कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तरक्की का एक अहम जरिया बनना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लों ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से अर्बन चैलेंज फंड के तहत दरदस्त लिए जाने वाले प्रोजेक्टों की निशानदेही और स्टार्ट लिस्टिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतलका महकमों को हिदायत दी कि वो आला मयार और माली एतबार से फाल प्रोजेक्ट मनसूबे मुरतब करें ताकि इन प्रोजेक्टों की तकमील में कोई दिक्कत पेश न आए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तसरुफ के लिए जवाबित में तरमीम की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान असेंबली को मोहल्ले की बीमारियों में मुबतला मुस्तहक मरीजों के लिए एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च करने का इख्तियार दिया गया है। हुक्मनामे में मुस्तहक मरीजों के लिए शराइत वजह किए गए हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी होगा। जम्मू कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का एक वफद वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुआ। मुलाकात के दौरान वफद ने उन्हें पंजाब में लाइव स्टॉक लाने वाली गाड़ियों की नकल व हमल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वफद ने वजीर आला से इस बारे में उनकी जाती मुदाखलत तलब की। वजीर आला ने वफद को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए नीज ताजरों और सार्फिन के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद जल्द ही पंजाब का दौरा करेगा ताकि तमाम मसाइल का हल तलाश किया जा सके। मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद ने ज़िराअत के वजीर जावेद अहमद डार के साथ सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुलाकात की। वफूद ने अपने मुतालबात और तरक्याती जरूरियात वजीर की दानिस्त में लाए। जावेद अहमद डार ने अवामी मसाइल का जायजा लेने की मुतलका अफसरान को हिदायत दी ताकि इनका इजाला मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी सरकार की तरजीहात में शामिल है। भारतीय फौज ने कपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई की। फौज के चिनार कोर की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि हिफाजती अमले ने कार्रवाई के दौरान एक कमीन गाह को तबाह करके 5 AK राइफलें, 9 मैगजीन और कुछ दीगर गोली बारूद बरामद किया। डायरेक्टर श्री कल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज अनंतनाग में गुंचा रेशम पालने के हवाले से जदीद तौर तरीकों से मुतलक 3 रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से रेशम के मयार और मकदार में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 4 बज चुके हैं। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहने का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर और संसारियों को अदब तै ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज कर और उम्मीद है जी तुसी सारे खैर खरीद नाल हो। सामीन इंसान मेहनत मुशक्कत नाल माल दौलत हासिल करदा तांजो इस ती फायदा चावै पर असी अपने समाज को टटोला तो असा को दो किस्म दियां बुराइयां आम नजर है।

साथियों, एसी प्रोग्राम दी पहली सौगात। तपता सूरज तपती धरती, गर्मी आई बदली सूरत। तपता सूरज तपती धरती, गर्मी आई बदली सूरत। छुट्टियां लैके खुशी वे आई, बच्चियां दे चेहरियां ते मुस्कान छाई। आमा दी खुशबू, लस्सी दा स्वाद, गर्मी विच वी कुदरत दा प्रसाद। रुख लगाइए छां वधाइए, हर एक बूंद दा मोल समझाइए। रुख लगाइए छां वधाइए, हर एक बूंद दा मोल समझाइए। मिलके करिए एह उपराला, हरा भरा होवे देश निराला। मिलके करिए एह उपराला, हरा भरा होवे देश निराला। साथियो, आज दियां ए 17 सुन के तुसी अंदाजा ला लिया होना कि आज असी किस दे बारे गलबात करांगे। सो साथियो, तुसी सुन रहे हो आज दा ए साडा विशेष प्रोग्राम, ते आज असी गलबात करांगे गर्मी दा मौसम, क्योंकि अजकल साडे इत्थे भी बहुत गर्मी पै रही है वादी दे विच भी। ते इस गर्मी दा आनंद लैंदे होए बच्चे जड़े हन घर दे विच छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पै रही सी, तो इस करके बच्चों नूं छुट्टियां भी दित्तियां गईयां, तो गर्मी का मौसम जिहड़ा है उस दा आनंद लै रहे हैं। साथियों, गर्मी नाल दियां प्रमुख रुत्तां विचों एक है। जे असीं गर्मी की गल करिए, यह रुत्त आम तौर पर अप्रैल तो जून तक रहिंदी है, तो इस समय सूरज दियां किरणां बहुत तेज होंदियां हन अते तापमान काफ़ी वध जांदा है। दिन लंबे अते रातां छोटियां हो जांदियां हन। गर्मी

आईयां खुशियां दियां सौगातां लाईयां, गर्मी दियां छुट्टियां आईयां खुशियां दियां सौगातां लाईयां, ना होमवर्क ना कोई तनाव, हासे खेडां दा हर पलचा, नानके घर दी मिठी याद, दादी नानी दे प्यार दी गल बेमिसाल, आम लस्सी ते ठंडी छां, मन नूं देण नवीं उड़ान, आओ छुट्टियां इंज मनाइए, खेडिए पढ़िए कुछ नवा सिख जाइए, आओ छुट्टियां इंज मनाइए, खेडिए पढ़िए कुछ नवा सिख जाइए, आईयां छुट्टियां आई बहार, आईयां छुट्टियां आई बहार, हर चेहरे ते खुशी अपार, हर चेहरे ते खुशी अपार, सवेरे खेडा शाम नूं गीत, हर दिन लगे नवा संगीत, किताबा नाल भी दोस्ती करिए, किताबा नाल भी दोस्ती करिए, चंगियां आदतां मन विच भरिए, मापियां दा आदर करना सिखिए, कुदरत नाल प्यार भी रखिए, मापियां दा आदर करना सिखिए, कुदरत नाल प्यार भी रखिए, मिठियां यादां नाल ही पल सजाइए, मिठियां यादां नाल ही पल सजाइए, गर्मी दियां छुट्टियां खुशी नाल मनाइए, गर्मी दियां छुट्टियां खुशियां नाल मनाइए। सो साथियों, अजकल जिहड़े साडे बच्चे साडे घर दे विच बैठे हन, खुशियां मना रहे हन, ते ओह वी इह गर्मी दियां छुट्टियां खुशियां दे नाल मनावण, कुछ नवां सिखण, अपने दिमाग नूं शांत करन, शांति दे विच बैठ के फिर नवें तो ताज़ा होके स्कूल वापस जाके अपनी पढ़ाई करन, अते अपने माता पिता नूं वी प्यार देण, अते आराम दे नाल किते वी घूमण जाओ ते साफ सफाई दा ध्यान रखो, क्योंकि आम तौर ते देखदे हां जदों वी असीं किते घूमण जांदे हां ते साफ सफाई नूं भुल जांदे हां, इस करके बाकियां दी मदद भी करो, अपने आसे पासे जरूर सफाई रखो। अज दा ये विशेष प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त होंदा है, इस उम्मीद दे नाल कि असीं फिर मिलांगे, तद तक लई तुसीं अपने ते अपने परिवार नाल इन्हां छुट्टियां दा आनंद लो, खुश रहो, आसे पासे सफाई रखो, लैंदे हां इजाजत, रब राखा।

0: सभी ना पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे ही समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम इस वक्फे के बाद।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

पिछली सदी में इस दुनिया में आया था, इन्ना इतनी जल्दी में इतनी सारी तब्दीलियां ने मुझ बेजार भी कियो। गल आगे करांगा। प्रोग्राम का शुरू में पेश है बशीर अहमद मस्ताना की आवाज़ में यू गीत, और यू कलाम है मोहम्मद इसराइल असर साबोरंग को।

समीन, हम गल कर रहा था टेक्नोलॉजी की। 90 की दहाई में पैदा हुई नस्ल जिड़ी अपना जातका माँ रिवायती जिंदगी को स्वाद चख चुकी थी, हूँ जवान है तो जिंदगी का अलग अलग शोभा में काम कर रही है। यह नस्ल भी इस बेहंगम जदीदियत ते जिंदगी की तेज़ रफ्तार ते बेजार हैं। पर दुनिया में सिर्फ तब्दीली ही इसी चीज़ है जिड़ी हमेशा ते कायम व दायम है, और इंसान ना ही इस बदलती दुनिया के नाल नाल अपना आप ना ढालना पवे और वक्त के नाल बदलनो भी पै। 21वीं सदी का दूजा दहाका ते बाद दुनिया में मस्नूई जहानत, जिसना कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नई ते हैरान कुन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। मस्नूई जहानत ने आस्ता आस्ता जिंदगी का हर शोभा ना मुतासर करनो शुरू कर लियो है, ते इंसान ने हुण मस्नूई जहानत का दौर की तेज़ तरार जिंदगी जीण का बंदोबस्त करना शुरू कर लिया है। मस्नूई जहानत कुछ साल बाद मौजूदा दुनिया को नक्शो बदल कर रख छुड़ेगी। हकीकी ते सादी जिंदगी जिड़ी एक इंसान जी रियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई जहानत ने इसना भी न सिर्फ मुतासर कियो है बल्कि आने वाला वक्त ना भी इसना और ज़्यादा मुतासर करेगी। गल आगे और भी महंगी, अगे हम सुन लिया अब्दुल रशीद कुरैशी और ना, और ये कलाम है इकबाल अजीम चौधरी और को।

समीन, हम चैट जीपीटी की गल कर रहा था और इसने अदब ना किस तरह मुतासर करना। हमने दिन दो चीज़ों को जिक्र कियो थो। पहली या जी लोग चैट जीपीटी की मदद ना अफसाना, कहानी, गज़ल, नज़म वगैरह छपवावेंगा और कई नकली शायर अदीब पैदा होएंगा। या फिर कुछ वे लोग जो इस वेले कुछ लिख रहे हैं वे चैट जीपीटी नाल अपना लिखता ना चमका ले जाएगा और इस तरह का कुछ नमूना आया है जिड़ा माजी चैट जीपीटी का उर्दू और अंग्रेजी मॉडल ना इस्तेमाल कियो गयो है। और इस तरह की पहल ज़्यादातर वे लोग करेंगा जिड़ा इस टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तो बेखबर हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के नाल ही इसका प्लेजरिज्म टूल जिड़ा के नकल जाहिर करने वाला हथियार सामने आया है, जिनका कुछ पेड वर्जन इतना ताकतवर है जिवे दूध को दूध ते पानी को पानी सामने कर दें। चाहे कहे तहरीर पूरी की पूरी चैट जीपीटी ने लिखी या फिर इसमें कुछ तब्दीली इसके जरिए की गई है, गोया के इसका पहला गाठमा पहलू को मारे कोल कुछ ना कुछ इलाज है। इसको दूजो गाठमा पहलू यू है कि चैट जीपीटी की जहानत अगे जनूटे के कई कलमकार शोभा ना भी लाया ने समझ के इस तो दूर होना चाहेगा, क्यों जी कुछ वक्त वास्ते इस शोभा में अचानक एक सैलाब आ जाएगा तो कोई आम इंसान हकीकी कलमकार ते चैट जीपीटी आला कलमकारा में फर्क नहीं कर सें। वर चैट जीपीटी को मुकाबलो करने वास्ते कलमकारा ना सिर्फ अपनो म्यार एक आम सतह तो उच्चो रखना पाएगा, ताजी अगर किसी ना एक मौजू पर मजमून पढ़ने की ज़रूरत है तो वो चैट जीपीटी का लिखा हुआ मजमून तो ज़्यादा अहमियत एक इंसान का लिखा हुआ मजमून ना तरजीह देगा। आने वाला नकादा ना भी होर एक्टिव होर टेक्नोलॉजी तो वाकफ होना होगा, ताजी वे उन टूल्स ते पहला ही ऐसा मवाद ना एकदम पकड़ सकें जिसमें इस टेक्नोलॉजी को अमल दखल हुआ है। हूँ इशाती इदारा ना भी होर मुतरक होना पाएगा ताजी चैट जीपीटी आली काई भी तहरीर शाया ना हो। चैट जीपीटी सिर्फ कमर्शियल शोभा में कंटेंट लिखने की ज़रूरत वास्ते इस्तेमाल होने की चीज़ है, फनी एतबार ना इसकी अहमियत काई नहीं, क्यों जी फनकार सिर्फ एक इंसान ही हो सके। चैट जीपीटी गज़ल ज़रूर कहेगो क्यों जिसने डेटा तो हर एक चीज़ सीख ली है और यह आम इंसान का डेटा को ही कमाल है। चैट जीपीटी की तख्लीकियत में इंसानी तख्लीकियत के बरक्स हमेशा फ़र्क रहेगा। चैट जीपीटी की मदद ना लिखने वाला दो मॉडलों को आपस में फ़र्क हो सके उसमें जब मुवाजनों करें तो तुम देखेंगा कि एक मॉडल को दूजा मॉडल के नाल लिखा हुआ कंटेंट की रिजम्बलेंस नहीं होती, यानी कि सेम चीज़ ना वो दो पहलुओं ते थारे सामने ले आएगा। गल आगे और भी करा, ये तुम अनीसा करीम ने सुन लिया तो यू कलाम है जहांगीर असगर औरंग को।

समीन, चैट जीपीटी की एक मिसाल ले लियो कि एक कहानी अगर लिखी जाए जिसमें एक फिल्म डायरेक्टर दो लोगों ना किसी मखसूस मौजू पर चैट जीपीटी के जरिए फिल्म लिखने वास्ते दे रहे हो, जिड़ो प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक खसूस मदद में चैट जीपीटी तो ज़्यादा मौसर कहानी लिखण में कामयाब हो गयो, वो शोभा को कामयाब आदमी मान्यो जाएगो। हुण नाल एक और मिसाल इसी तू लभे, जे अगर इन दो लोगों बिचू कोई एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बजाय चैट जीपीटी के स्क्रिप्ट राइटर कोलू फिल्म की कहानी लिखवाए, फिर इस स्क्रिप्ट राइटर कोलू मुतालो, मुशाहदो, तख्लीकी कुवत और सोचण में व काबिलियत होनी लोड़ है जिड़ी वो इसी मदद में एक ऐसी ही स्क्रिप्ट तैयार कर सके। कमर्शली वो इंसान कामयाब होया को जो फन ना भी जानतो वह और टेक्नोलॉजी ना भी जानतो वह। यह चीज़ कमर्शियल दुनिया में मुकाबला वास्ते एक टेक्नोलॉजी का तौर पर एक हथियार है। इसको हकीकी कलमकार के नाल कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ इसकी जानकारी और इसका मनफी असरात पर सबाना नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे बहस सुन लिया, ये आवाज़ है संजीत थॉमस होरा की। संजीत थॉमस होरा की।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000

0: से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बना रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इशाकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा FM 71.5 MHz पेट समय पेशो खदमत प्रोग्राम गमी बाइन हिंद खतरा।

ربكم ورب آبائكم الأولين.

بل هم في شك يلعبون.

0: दर्जन से ज्यादा जिनमें मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी व ऑटो शामिल हैं, मलबे में दबी हुई हैं और एक स्कूल बिल्डिंग की दरो दीवार पत्थरों की जद में आकर तबाह हुई है और बिजली के पोल जिन पर सप्लाई लाइनें और बिजली के मीटर नसब थे, पानी के तेज रेलों ने उनको जड़ से उखाड़कर अपने साथ बहा लिया है, जिसके नतीजे में इमलाक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका तखमीना लगाना अभी मुश्किल और बाकी है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि PMGSY एजेंसी के तहत दो लिंक रोड्स पर तामीर का काम अंजाम दिया जा रहा है, जिनमें ST बस्ती लोपा और बडानु महारी रोड शामिल है। इन सड़कों की तामीर के दौरान PMGSY एजेंसी और ठेकेदारों को इनसे निकलने वाले पत्थर और मट्टी व मलबा को नाला में न डंप किया जाए, इसलिए कि यहाँ सैलाब का खतरा बना रहता है। मगर ठेकेदारों ने PMGSY हुक्काम के साथ साथ साजबाज करके इस नाला में मट्टी, मलबा और पत्थरों को डंप कर लिया था, जो कि आज इस तबाही का सबब बना। इतनी भारी तबाही हुई कि इस ताल्लुक से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा को एक चिट्ठी लिखी और जिन्होंने एक्सियन PMGSY को लिखी और दूसरा एक खत सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PMGSY को MLA डोडा महराज मलिक ने लिखा, मगर इन खतों पर अभी तक किसी भी तरह अमल दरामद नहीं हुआ है, जिस पर ठाठी की कसीर आबादी सख्त नाला है। इस सिलसिले में कस्बा ठाठी में PMGSY हुकाम के खिलाफ अलामती हड़ताल रखी हुई है और तमाम कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर से बंद पड़े हैं और कस्बा ठाठी मातम खुदा मंजर पेश कर रहा है। इस हादसा पर मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किशलू, साबिक मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी, साबिक होम मिनिस्टर खालिद नजीब सहरवर्दी और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट फलेसी ने नुकसान जदगान कंबों के साथ दुख और हमदर्दी का इजहार किया है। जिला इंतजामिया के अफसरान बशमूल डिप्टी कमिश्नर डोडा जाए हादसे पर वारिद हुए थे और बहाली के काम में अपने मातहत हुकाम को हदायत दे रहे हैं, मगर ठाठी की कसीर आबादी PMGSY हुकाम के खिलाफ सख्त नाला है।
1: ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटने के वाकये के बाद सूरतहाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा को मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने और बहाली के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोशल मीडिया एक्स पर इस हवाले से एक पोस्ट भी लिखी। इस दौरान जम्मू खत्ते के दीगर इलाकों में हो रही बार बार की बारिश के बाद से इंतजामिया ने एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। खत्ते के कठुआ जिले के बड़ा इलाकों में लगातार बारिश के बाद नदी नालों में सतह आब में इजाफा हुआ है, जबकि जमीन खिसकने के वाकयात भी रोनुमा हो रहे हैं। कठुआ के बड़ा इलाकों में मानसून के दौरान अक्सर पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी के तूदे गिराने के वाकयात रोनुमा होते हैं और यही वजह है कि इंतजामिया ने इस बार तमाम महकमों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। तफसीलात रमेश मराठा से।
2: बरसात के मौसम के शुरू होते ही जिला कठुआ के बेशतर इलाकों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बसने वाले हर शख्स को जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने आप को महफूज रखने की हिदायत जारी किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशों के दौरान अपने सफर को महदूद रखने के हिदायत भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। वहीं पर जिला कठुआ के छोटे बड़े नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। रावी दरिया, उज दरिया के साथ साथ बनी में सेवा दरिया और बसोली में रंजीत सागर डैम में पानी की सतह में इजाफे के मद्देनजर जिला कठुआ पूरी तरह से चौकस है। SDRF की टीम को किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रखा गया है। सांबा के बसंतर दरिया में तेज पानी के बहाव में कुछ लोगों के फंसे जाने की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों के साथ साथ SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और तमाम फंसे हुए खास को बचा लिया गया। पिछली रात की तेज बारिशों से डिंग अम्ब पंचायत चिलक का सड़क राबिता पूरी तरह से बह गया, जिस वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी है। रास्ते से मलबा हटाने में वक्त लग सकता है। एक अच्छी खासी आबादी चिलक पंचायत की पूरी तरह से मुतासिर हुई है। बनी बसोली राबिता सड़क पर खास तौर पे बरसात के मौसम में पसियां आने का खतरा रहता है, जिस वजह से ये राबिता सड़क ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद हो जाती है। जिला हुकाम ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें, जबकि पिछले साल की तबाहकुन बारिशों से पूरे जिले में राबिता सड़कों को काफी ज्यादा

0: दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
1: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
2: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
2: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन पासपोर्ट खिदमात की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर 11 जुलाई शनिचरवार को खसूसी मुहिम चला रहे, जिसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और बारामूला मामूल के मुताबिक दरखास्त गुजारों के लिए खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर BS रावत ने कहा कि इस खसूसी इकदाम का मकसद शहरियों को बरवक्त शफाफाना तरीके पर पासपोर्ट दस्तियाब कराना है। इस सिलसिले में दरखास्त गुजार www.passportindia.gov.in पर अपनी दरखास्तें दर्ज करा सकते हैं और 11 जुलाई के लिए अपनी सहूलियत के मुताबिक वक्त हासिल कर सकते हैं और मुकर्रर वक्त पर अपॉइंटमेंट की तस्दीक और तमाम असल दस्तावेजात के साथ मुतल्लिका दफ्तर पर हाजिर हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने साबिक जिला सदर अनंतनाग और साबिक रुकन असम्बली एडवोकेट गुलाम नबी डार की 20वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। बताया जाता है कि कल 8 जुलाई को सवालगाम कुलगाम में मरहूम के मजार पर फातेखानी और गुलबारी की तकरीब मुनक्कद होगी, जबकि उनकी याद में एक ताजियती मजलिस भी मुनक्कद होगी जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा काबीना वुजरा, अराकीन असम्बली और दीगर अहदेदारान शिरकत करेंगे। सामीन बटामालू के मोमिन आबाद दालान मोहल्ला टेंगपोरा बाईपास के मकीनों ने इलाके में तवील बिजली कटौती पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए महकमा बिजली से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। मकामियों के मुताबिक गुजशत एक हफ्ते से रोजाना तकरीबन 6 घंटे की इजाफी बिजली कटौती हो रही है, जिसके बायस लोग गर्मियों के इस मौसम में तरह तरह के मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनका इलाका बटमालू रसिंग स्टेशन के फीडर नंबर 2 से मुंसलिक है और बार बार बिजली बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने महकमा बिजली से मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी को जल्द अज जल्द मामूल पर लाया जाए ताकि लोगों को गर्मी के इस मौसम में राहत मिल सके। अनंतनाग के अचबल में आज महकमा सीरीकल्चर की जानिब से 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप का आगाज हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टर सीरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद रेशम के काश्तकारों और महकमे के अमले को जदीद साइंसी तरीकों से रोशनास कराना है ताकि कोकून की पैदावार और मयार में इजाफा हो और रेशम परवरी के शोबे को मजीद फरोग मिले। वर्कशॉप में बीमारियों से बचाव, जदीद आलात के इस्तेमाल, साइंसी तरीके पर परवरिश और पायदार पैदावार से मुतल्लिक अमली तरबियत दी जा रही है। बाद अज़ां डायरेक्टर मौसूफ ने ऐशमुकाम अंतनाग में मुजवजा सिल्क रेलिंग यूनिट के लिए मुजवजा जमीन का भी दौरा किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन तआवुन दिया जाएगा। समीन जम्मू कश्मीर के अखनूर के चौकी चोरा इलाके में आज एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके 22 एक शख्स की मौत और 2 के जख्मी होने की इतला है। बताया जाता है कि गाड़ी बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में राजू शर्मा की मौत हुई है, जबकि रोशन लाल और तुषार रैना साकनाने कालाकोट जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुलशन कल्चरल फोरम ने मारूफ अदीब मुहक्किक और अफसाना निगार रशीद राशिद के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। समनबल बदरन में मुनक्कदा ताजियती इजलास में मुकर्ररी ने मरहूम की अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके इंतकाल को कश्मीरी अदब के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। इजलास के अख्तिताम पर मरहूम के एहसाले सवाब के लिए दुआ की गई और सुगवरान से ताज़ियत का इजहार किया गया। समीन बाज असाज़ा की तरफ से शहरवीन को बताया गया है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिड डे मील स्कीम के तहत रुकूमात की अदायगी में काफी ताखीर हो रही है और इस वजह से उन्हें सख्त

0: रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: दरियस्ता वजीर अजम नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बेंतांग अदिपुरना से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर को हिदायत दी है कि वह जिले के ठाठरी इलाके में बादल फटने के नतीजे में मुतासर हुए कुंभों को फौरी तौर से रिलीफ और इमदाद वागुजार करें। एलजी ने आज डीसी डोडा के साथ बात करके बादल फटने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। एलजी को बताया गया कि इस आफत के दौरान कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। मनोज सिन्हा ने हुकाम को हिदायत दी कि वो बहालियाती काम के साथ NH-244 काबिल आमोदरफ्त बनाने के काम में तेजी लाएं। वजीर आला अमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन को चालू करने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए समंदर पार ममालिक में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जाएं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुनरमंद नौजवानों को आलमी सतह के रोजगार के मौकों के साथ जोड़ने के लिए एक शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इको सिस्टम वजूद में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए महफूज और बाएतबार समंदर पार प्लेसमेंट को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। इसी दौरान श्रीनगर में आज ट्रेवल टूरिज्म और तिजारत से वाबस्ता कई वफूद ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उनकी दानिस्त में अपने अपने शोबों से जुड़े मसाइल और मुतालबात लाने के अलावा उनसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने सभी वफूद के मामलात गौर से सुनकर उन्हें हर सेक्टर के लिए एक मुनासिब माहौल फराहम करने का सरकार की तरफ से यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सियाती सेक्टर जम्मू कश्मीर में रोजगार और इक्तसादी के अहम मुहरिकात में शामिल है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसन तरीके पर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ पवित्र गुफा में हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक मजीद 25,327 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। दरियस्ता यात्रा पर आने वाले यात्री जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यात्रा के आसन इनाकात की खातिर किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। चंद यात्रियों के तासुरात।
2: मोनू कुमार शर्मा है मेरा नाम जी और मैं दिल्ली गाजियाबाद से हूँ। मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। धन्यवाद देता हूँ, देखो बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे।
3: मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेकर आया हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे साथ में 2 बसें आई हुई हैं। हम यहाँ पे अपनी कम से 90 जने आए हुए हैं हम 2 बस में, जिसमें कि एक बस हमारी यहाँ पे श्रीनगर पहुँच चुकी है, दूसरी बस में बलियान में खड़े हुए हैं।
4: प्रदेश के इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव, मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के शासन प्रशासन अच्छा काम करा है, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ।
1: इसी दौरान शिवलिंगम के दर्शन करने वाले चंद यात्रियों ने अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया।
5: अभी हमारी वापसी हो रही है बालटाल से, हमने दर्शन कर लिए आज, रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए बालटाल से लेके ऊपर केव तक, बहुत अच्छे से मतलब सब मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रही है, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से है इस बार भी।
6: बिना तकलीफ के यहाँ पे यात्रा सुनी है और यहाँ के गवर्नर की मोदी जी की बहुत अच्छी सुविधा है कि कोई भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छी तरह से पहुँची है।
7: हमारा यात्रा अभी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग चंद्रवाणी पहुँच चुके हैं। पूरे रूट पे जेएन के पुलिस है, आर्मी के साथ साथ वो भी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके बढ़िया इंतजाम है। इतने सारे जो पिलग्रिम्स है मतलब दर्शनार्थी है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई असुविधा होगा, आप इतने ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हैट्स ऑफ।
1: दरियस्ता आज 8,815 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी पहुंचा। इनमें से 3,989 यात्री वालतल जबकि 4,826 यात्री पहलगाम के रास्ते से श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंच रहे हैं। पुलिस सरबरा नलिन प्रभात ने आज उधमपुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने एक महफूज और बिला खलल यात्रा यकीनी बनाने के लिए बैन एजेंसी ताल में

और मुख्तलिफ सतहों पर कोऑर्डिनेशन की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस श्री अमरनाथ जी यात्रा के आसन इनकाद की खातिर तमाम तर इकदाम कर रही है। और अब यात्रा से मुतलिक ये पैगाम। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। कबायली उमूर और जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि सरकार एक अवाम दोस्त साफ और शिफाफ और फाल इंतजामिया फराहम करने के लिए पुरअज़म है। वो आज श्रीनगर में उनसे मिलने आए कई वफूद और अफराद के मसाइल की समात के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। इन वफूद ने वजीर की नोटिस में कई तवज्जो तलब मामलात लाए और उनके इजाले के लिए वजीर की मुदाखलत की जरूरत उजागर की। दरियासना वजीर मौसूफ ने महकमे जल शक्ति में नौकरी पाने वाले 329 नए जूनियर इंजीनियरों का इस महकमे में खैर मकदम किया। वजीर ने उन्हें अपने फराइज मुकम्मल लगन और तनदेही के साथ अंजाम देने की तलकीन की। गजाई मसनूआत में मिलावट के मामलात का जायजा लेने वाली कमेटी ने आज इस हवाले से कई मामलात का जायजा लेते हुए इस सिलसिले में वजह करदा कवायद और जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद करने पर जोर दिया। कमेटी के चेयरमैन पीरजादा फारूक अहमद शाह की सदारत में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अफसरों ने महकमे की कारगुजारी और वजह करदा कवायद और जवाबित के तहत अपने इख्तियारात नीज यूटी बर में चलाई जाने वाली मुआयना की मुहिमों के बारे में कमेटी के अरकान को जानकारी दी। चेयरमैन ने कहा कि ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का रास ताल्लुक सेहत आमा और आवामी जिंदगी के साथ है, लिहाजा इस महाज पर गलतियां करने वालों को हरगिज नहीं बख्शा जाना चाहिए। पासपोर्ट खिदमात की फराहमी के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नजर पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से 11 जुलाई शनिचरवार को एक खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत 11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बारामूला में यह खिदमत इस मुहिम के तहत जारी रहेंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर बीएस रावत ने कहा है कि ख्वाहिशमंद अफराद महकमे की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तसरुफ के लिए जवाबित में तरमीम की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करता हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान असेंबली को मौलिक बीमारियों में मुबतला मुस्तहक मरीजों के लिए एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च करने का इख्तियार दिया गया है। हुक्मनामे में मुस्तहक मरीजों के लिए शराइत वजह किए गए हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी होगा। दही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामूला में एक मीटिंग के दौरान रूहामा लडूरा सड़क प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट से मुतासर होने वाले 26 कुंभों के मामलात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इस इलाके का दौरा करके मुतासरा ढांचों की जल्द अज जल्द वैल्यूएशन कराएं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जुजला टनल, श्रीनगर जम्मू कॉरिडोर पर 36 टनल, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क राबतों को दवाम बख्शने के लिए दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों समेत दीगर फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की बदौलत खितों के दरमियान राबता मुस्तकम होने के साथ साथ मुल्क के तरक्याती अमल को भी दवाम हासिल हुआ है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत कन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे पर मबनी तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। चीफ सेक्रेटरी अटल जिलू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से अर्बन चैलेंज फंड के तहत दरदस्त लिए जाने वाले प्रोजेक्टों की निशानदेही और शॉर्ट लिस्टिंग के अमल का जायजा लिया। भारतीय फौज ने कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई की। फौज के चिनार

कोर की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि हिफाजती अमले ने कार्रवाई के दौरान एक कमीनगाह को तबाह किया। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने जोर देकर कहा है कि पार्टी की असल मजबूती इसकी तंजीम और वक्फ कारकुनान हैं। जम्मू में आज बीजेपी से वाबस्ता यूटी के पार्लियामेंट मेंबरान, मेंबरानी कानून साजिया, साबिक कानून साज काउंसिल मेंबरान, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज, साबिक डीडीसीज और बीडीसी मेंबरान के साथ मुनाकद मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी से वाबस्ता मुंतखबा नुमाइंदों और मेंबरान को एक टीम की हैसियत से काम करना चाहिए ताकि पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाया जा सके। मीटिंग में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी

0: ंग और तवील मुद्दत तक ऐसे मैदनियात की फराहमी पर भी बातचीत में पेशरफ्त होगी। इंडोनेशिया के हवाई हदूद दाखिल करते ही वजीर आजम के तैयारे एयर इंडिया वन को इंडोनेशिया के एयरफोर्स के F-16 और Sukhoi-30 लड़ाका हवाई जहाजों ने एस्कॉर्ट किया और हवाई अड्डे पर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरे की शुरुआत में ही 10 बड़े स्ट्रेटेजिक समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें सेहत से मुतलिक समझौते के तहत इंडोनेशिया के डॉक्टरों की तरबियत और वहां के अवाम को भारत की अच्छी क्वालिटी वाली अद्वियात की फराहमी शामिल है। इसके साथ ही अवामी तकसीमकारी और मिड डे मील स्कीमों से मुतलिक तरीके कार को भी इंडोनेशिया के मुतलिक महकमों के साथ सांझा किया जाएगा। एक खबर के मुताबिक भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल फराहम करेगा। याद रहे कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान 2018 में शराकतदारी को जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। ये भी खबर आ रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने में भी इंडोनेशिया की मदद करेगा। उम्मीद है कि इंडोनेशिया के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कामयाब रहेगा और भारत और इन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और भी बेहतर होंगे और इंडो पैसिफिक खिते में अमन और सलामती के लिए संग मील साबित होगा। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मिडवे के अलावा FM 103.5 MHz पर समय समाप्त करें प्रोग्राम वादी की आवाज एक वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समीन सियासी क़यादत किसी भी मुल्क की सिमत, पॉलिसी साजी और कौमी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। मजबूत दूरंदेश और ज़िम्मेदार क़यादत रियासत को दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है, जबकि कमज़ोर गैर मुस्तकिल और मफादाती सियासत कौमी मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना देती है। पाकिस्तान में सियासी क़यादत और कौमी तरजीहात के दरमियान अदम तवाज़ुन एक मसला बनता जा रहा है, जो न सिर्फ हुकुमरानी बल्कि मईशत, कौमी यकजहती, अवामी एतमाद और रियासती इस्तेकाम को भी मुतासर कर रहा है। समिन मौजूदा हालात ये जाहिर करते हैं कि कौमी मफादात के मुकाबले में सियासी मफादात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसके बायस कई बुनियादी मसाइल मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद संगीन चैलेंजेस से दो चार है, जिनमें मौशी बहरान, महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, तवानाई की किल्लत, पानी का बहरान, तालीमी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली नुमाया हैं। ये तमाम मसाइल तवील मुद्दती और मरबूत पॉलिसियों का तकाजा करते हैं, लेकिन सियासी माहौल ज़्यादातर इक्तदार की कशमकश, इंतखाबी सियासत और बाहमी महाज आराई के गिर्द घूमती दिखाई देती है। इस सूरत हाल ने कौमी तरजीहात को पस मंज़र में धकेल दिया है। सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान का एक मुसलसल मसला बन चुका है। हुकूमतों की तब्दीली, एहतजाजी सियासत, पार्लिमानी कशीदगी और मुसलसल सियासी तनाजात के बायस पॉलिसियों में तसलसल बरकरार नहीं रहता। जब हुकूमती तवज्जो अपनी सियासी बका पर मरकूज हो जाए तो कौमी मनसूबाबंदी और तरक्याती अमल भी मुतासर होने लगता है। सामिन मौशी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी तरजीह होनी चाहिए, लेकिन सियासी इख्तलाफात अक्सर मौशी इस्लाहात से ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, कर्जों का दबाव, कमज़ोर बरामदात, सरमायाकारी में कमी और मालियाती मुश्किलात ऐसे मसाइल हैं जो मुसलसल अवामी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, मगर सियासी बयानिए में इन पर मुस्तकिल और संजीदा तवज्जो कम दिखाई देती है। दहशतगर्दी और दाखिली सलामती भी पाकिस्तान के अहम तरीन चैलेंजेस में शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल, सरहदी कशीदगी और शिदत पसंद अनासर की सरगर्मियाँ कौमी सलामती पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन सियासी इख्तलाफात के बायस कई मरतबा सलामती के मुतल्लिक कौमी इत्तेफाक राय कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की भी कौमी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए, मगर ये शोबा मुसलसल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तालीमी मयार, तहकीक, जदीद महारतों और तकनीकी तालीम के हवाले से मौजूद कमजोरियां मुस्तकबिल की मईशत और कौमी मसाबकत को मुतासर कर रही है। इसके बावजूद सियासी मुबाहिस में ये मौजूआत अक्सर सानवी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। सेहत का शोबा भी मुतअद्दिद मसाइल से दो चार है। सरकारी अस्पतालों पर बढ़ता हुआ दबाव, तिब्बी सहूलियत की गैर मसावी दस्तियाबी

आयात की कीमतों में इजाफा और सेहत के बुनियादी निज़ाम की कमजोरियां आवामी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं, लेकिन कौमी सतह पर इन मसाइल पर मुसलसल तवज्जो कम दिखाई देती है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती मसाइल भी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरात बन चुके हैं। सैलाब, खुश्कसाली, पानी की किल्लत, फजाई आलूदगी और दर्जे हरारत में इजाफा पाकिस्तान की मईशत और अवामी जिंदगी पर बराए रास्त असर डाल रहे हैं, लेकिन ये मसाइल भी अक्सर सियासी तरजीहात में नुमाया मकाम हासिल नहीं कर पाते। सियासी पोलराइजेशन ने कौमी यकजहती को भी मुतासर किया है। सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई तलखी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और मुसलसल महाज आरई ने कौमी इत्तेफाक राय को कमज़ोर किया है। इस माहौल में कौमी मफादात पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने भी सियासी तरजीहात की नवियत तब्दील कर दी है। अवामी मसाइल पर संजीदा बहस के बजाय बयानात, जवाबी बयानात, प्रोपेगेंडा, ट्रेंड्स और सियासी मुहिमात ज़्यादा नुमाया हो रही है। इसके नतीजे में हकीकी कौमी मसाइल कई मरतबा अवामी तवज्जो से ओझल हो जाते हैं। इदाराजाती मसाइल भी कौमी तरजीहात पर असरअंदाज हो रहे हैं। पॉलिसी साजी में अदम तसलसल, इंतज़ामी कमजोरियाँ, सुस्त फैसला साजी और अमल दरामद के मसाइल तरक्याती मंसूबों को मुतासर कर रहे हैं। यही सूरत हाल अवाम के रियासती इदारों पर एतमाद को भी कमज़ोर कर रही है। सबसे तश्वीशनाक पहलू ये है कि अवामी मसाइल और सियासी बयानिये के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। आम शहरी महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम, सेहत, अमन अमान और बुनियादी सहूलियात जैसे मसाइल से दो चार है, जबकि सियासी गुफ्तगू का बड़ा हिस्सा इक्तदार, इंतखाबात और सियासी तनाजात के गिर्द घूमता नजर आता है। यह तजाद अवामी एतमाद को भी मुतासर कर रहा है। सामिन, सियासी क़यादत और कौमी तरजीहात पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और इंतजामी मंजरनामे की एक अहम हकीकत की अकासी करते हैं। मौजूदा सूरत हाल जाहिर करती है कि कौमी मफादात और अवामी मसाइल के मुकाबले में सियासी मफादात ज़्यादा नुमाया हो चुके हैं, जिसके बाइस पाकिस्तान को दरपेश मुतअद्दिद बुनियादी मसाइल मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। आइए सामीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस पड़ाव पर समाप्त करते हैं ये गज़ल।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। समिन, प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन, 21वीं सदी में जंग का तसव्वुर तेजी से तब्दील हो रहा है। रिवायती जंग जिसमें सिर्फ फौजी ताकत और हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, अब अपनी सबका शक्ल से आगे बढ़ चुके हैं। मौजूदा दौर में रियासतें एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ साइबर हमलों, मालूमाती जंग, मौशी दबाव, सिफारती तन्हाई, नफसियाती मुहिमात, प्रॉक्सी अनासर और सोशल मीडिया को भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी जदीद अंदाज को हाइब्रिड जंग कहा जाता है। पाकिस्तान भी इस बदलते हुए आलमी माहौल में मुख्तलिफ नवियत के हाइब्रिड खतरात का सामना कर रहा है, जिनके असरात कौमी सलामती, मईशत, सियासत, समाजी हम आहंगी और रियासती इस्तेकाम पर नुमाया तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। सामिन, हाइब्रिड जंग की सबसे नुमाया खसूसियात ये है कि इसमें दुश्मन हमेशा रिवायती फौजी हमला नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करके रियासत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करता है। गलत मालूमात, जाली खबरें, सोशल मीडिया मुहिमात, मुआशी दबाव, सिफारती तन्हाई और दाखली इख्तलाफात को हवा देना हाइब्रिड जंग के अहम हथियार समझे जाते हैं। इस तर्ज की जंग में मैदान जंग सरहदों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मालियाती निज़ाम, ज़राए अब्लाग और अवामी जहन भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले मालूमाती जंग के मैदान में बड़े चैलेंजेस का सामना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत मालूमात, जाली वीडियोस, अफवाहें और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिमात तेजी से फैल रही हैं। इन सरगर्मियों के जरिए अवामी राय को मुतासर करने, कौमी इदारों पर एतमाद कम करने और माशरे में इंतशार पैदा करने की कोशिशें मुसलसल देखी जा रही हैं। मालूमात का ये गैर रवायती महाज कौमी सलामती के लिए एक अहम मसला बनता जा रहा है। समिन, साइबर हमले भी हाइब्रिड जंग का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सरकारी इदारे, मालियाती निज़ाम, तालीमी इदारे, तवन्नाई का शोबा और मवासलाती नेटवर्क मुसलसल साइबर खतरात की जद में हैं। हसास मालूमात तक गैर कानूनी रसाई, डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमले और साइबर जासूसी जदीद जंग की नई शक्लें बन चुकी हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन के साथ ये खतरात मजीद नुमाया होते जा रहे हैं। मौशी दबाव भी हाइब्रिड जंग का एक मौसर जरिया तसव्वुर किया जाता है। आलमी मालियाती हालात, सरमायाकारी में कमी, तजारती दबाव, करेंसी के मसाइल और मौशी गैर यकीनी सूरत हाल किसी भी रियासत की दाखली ताकत को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान पहले ही मौशी मुश्किलात का सामना कर रहा है, जिसके बाइस बिरूनी मौशी दबाव के असरात मजीद गहरे महसूस किए जा रहे हैं। सामिन, दहशतगर्दी और प्रॉक्सी अनासर भी हाइब्रिड जंग का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। गैर रियासती अनासर के जरिए अमन अमान को मुतासर करना, सरहदी इलाकों में अदम इस्तेकाम पैदा करना और रियासती इदारों को मुसलसल दबाव में रखना जदीद तनाजात की नुमाया खसूसियात बन चुकी है। पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात और शिद्दत पसंद सरगर्मियों के बायस दाखली सलामती के मसाइल से दो चार है, जो हाइब्रिड खतरात की पेचीदगी को मजीद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ समाजी तकसीम पहले ही मौजूद है और सोशल मीडिया के जरिए इन इख्तलाफात को मजीद नुमाया करने की कोशिश दाखली इस्तेकाम पर असर अंदाज हो रही है। सिफारती मैदान में भी पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई मसाबकत, इलाकाई तनाजात और बदलते हुए इतिहाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुसलसल असर अंदाज हो रहे हैं। ऐसे हालात में सिफारती दबाव भी हाइब्रिड जंग के एक अहम पहलू के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसके बायस हाइब्रिड जंग पाकिस्तान के लिए एक मुसलसल और कसीर जहती चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सामीन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की।

0: noteworthy is yes, but the potential that India-New Zealand partnership has, it has not been tapped to the optimal level. And that is something that both the sides want to work on, particularly India-New Zealand free trade agreement that has already been signed, yet to be implemented. So I think both the countries are working on trade and investment sectors. They are also working on securing salience of communication, maritime security, as well as the emerging sectors of technology. So I think a lot of potential, a lot of possibilities, and this is what these two countries and their leaders are aiming to achieve in times to come.
1: Right. Thank you so very much, Professor Mishra, for having joined us and shared your views.
0: Pleasure. Thank you.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's Indonesia, Australia and New Zealand visit and its strategic significance. The participants were Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Nishit Kumar, anchor.
3: Spotlight. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
4: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
4: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
4: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा

0: संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक

0: वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।

0: जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान

0: का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग में जहातर अठाशिरा अठक मीटर यानी अक्सा सकत शुरा किलो हर सवाल आव एफ एम अखतरा शारिया 5 में घाटसन पेट।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

मतभेद पेश करान मोहम्मद अशरफ गनाई। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। रात के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार, बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की, अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा, बहरी सलामती, तजारत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकेकार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
2: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।

0: कार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से तीन लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे नौ मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मेपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर छह मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के पांचवें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 में 0.3 और स्मॉल कैप 100 में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसअत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में

0: आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफएम 17.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय रात 9:30 पेश खिदमत प्रोग्राम संगरमाल।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम। बस
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: वहाँ अभी बस जेमनी पे आरोप कर रहा हूँ।
0: गुलाम नबी भट्ट
1: हाँ ना, जेमनी पे आते बस
0: बेमने पैठन। गुलाम नबी भट्ट। गुलाम नबी सब क्या करन?
1: कराची में बस गाड़ी बस ना छके तो बस गाड़ी आसान
0: चलो, अल्लाह ताला थेनो सेहत कामिल क्या
1: तो
0: इसके।
1: ना करा मैं जिसको जोर तो देश में ऐसे गो में कोविड इंफेक्शन तो वो क्यों टाइम से मैं रोते हम था वहाँ की
0: रब्बुल आलमीन करनो शफाई कामिल अता इंशाल्लाह। वेनु कुसु फिल्म
1: मैं तो
0: बर्च
1: बहुत
0: बोजुन।

0: फिल्म नाम था आंखे
1: आंखे।
0: हाँ अच्छा बोलते से जवाब मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
1: जरूर बोझना हो तो ऐसे कुछ बोझन
0: मे सहरान साहब बेचो जुनेद साहब बेचो अरफात अयान अरकान साहब चटा जी
1: चलो ठीक इंशाल्लाह तो सारे तम वातना यह खूबसूरत फिल्मी बात कर तो एंजॉय पन्न सथियन सत।

0: पता अब कि बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा।
1: और अगर ये नगमा मौजूद नहीं हुआ हमारे पास तो कौन सा नगमा सुनेंगी?
0: फिर अपनी मर्जी पे कोई सुनाना।
1: राफिया जी हमारी मर्जी पे नगमा सुनना चाहती हैं
0: जी, और मेरे साथ कुछ साथी भी है।
1: जरूर, आपका जो ये पसंद है, हमारी पसंद पे जो आप सुनना चाहते हैं ना, ये जरूर हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और अपने साथियों के नाम भी आप जरूर बताएंगी, बताइए।
0: पहले आप सुनोगी हमारे साथ?
1: जरूर।
0: और मैं सुमा।
1: हाँ हाँ।
0: और तौसीफ शौकी।
1: तौसीफ शौकी, जरूर
0: जी।
1: चलिए राफिया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
0: ओके, अस्सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, आपकी फरमाइश।
0: जी, कौन बोल रहे?
1: रोहित दीदी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का करम, आप कौन बोल रहे?
1: जी, मैं अर्शद हुसैन दुरानी बोल रहा हूँ, बसंत बाग से।
0: अर्शद हुसैन दुरानी, अर्शद साहब कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है।
0: जी अर्शद साहब, कौन से नगमे का इंतखाब किया है आज?
1: जी, आज मुझे एक गीत की फरमाइश करनी है।
0: जरूर।
1: कुमार सानू की आवाज में है।
0: जी,
1: फिल्म का नाम है दिल कितना नादान है।
0: दिल कितना नादान है, इसका कौन सा नगमा?
1: इसका नगमा दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान है, जिसने पागल किया जिसने घायल किया।
0: यानी कि आप
1: टाइटल
0: इसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: जी जी इसका टाइटल सॉन्ग
0: जरूर जरूर आप तक पहुंचेगा। अपने साथियों के नाम बताएं।
1: जी, मेरे पास मेरे फ्रेंड भी बैठे हैं, ये है शबीर, इम्तियाज
0: जी,
1: और मोहम्मद यासीन मीर और मोमिन यासीन मीर। शुक्रिया
0: अर्शद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा आकाशवाणी श्रीनगर से।
1: जी अर्शद जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: गुलाम नबी मल्ला से बंड पे लार वापस
0: गुलाम नबी मल्ला साहब, तू क्या शो करान? गाड़ छो मारान, माशाल्लाह, वारे असल काम छी। तो लगान छे गाड़ वंकस? अच्छा, यानी कि वंकन छन खास गाड़ लगान के? अल्लाह ताला करनो बरकत तुहंदिस कारस गुलाम नबी साहब। सोन छु यो है दुआ तिकाज तुह रुजो ऐसे मजेदार गाड़ खावान, ठीक छे? वैसे वलरिज गाड़ अगर वछो, वलरिज गाड़ छ वारी मशहूर आसान। ओके, यानी कि आज छु पूरे गांव से यह कार है? कुनवुह गाम। गुलाम नबी साहब, अल्लाह ताला फिर इन जॉयन आप इंशाल्लाह जरूर तो तुहंदिस कारस ते बाकियन यम जन बोजन वे लिसनर्स विंकेस अच्छे तिहंदिस कारस ते सब दिन बरकत इंशाल्लाह। वन तो आज कुसु फिल्मी बात छु बोजन?
1: मे वो दीदी तकरीबन कर प्रोग्राम दावरी ट्राई, मगर पत्मी प्रोग्रामस मज नव बारस मज कर सकिन दीदी से का।
0: अच्छा,
1: सह गई मे गोदनिच कल, आज गई दुम कल, शुक्र अल्लाह ताला कन तुसे गो मुलाकात।
0: चलो ये सठा जान वो यह तुह खुशी ना सपदान अस सत सपद या अस कॉल कर इथे पे अस खुशी सपदान ये जन कह प्रोन लिसनर या नो लिसनर अस जुड़ान छु, खास तौर पर सो लिसनर उस कल पत फोन छु करान। खर मकदम छु बे एक फिर तुहद अजकिस ये प्रोग्रामस मन वन तो आज कुस हू फिल्म बात छु बोजन?
1: फिल्म बेताब।
0: बेताब,
1: शबीर कुमार से लता मंगेशकर गवान जब हम जवान होंगे।
0: माशाल्लाह, वारिया खूबसूरत नगमो इंतखाब छु तुम कर्मुत, तुम कुछ चीज बे बोजन?
1: अस मोहम्मद अशरफ डार बानियर पे, बे मे हर अख नजीर अहमद डार, बे शबीर अहमद मला,
0: मे
1: बैंस मे जायद अहमद डार,
0: चलो तुह सारे तम वात बेताब फिल्म पे खूबसूरत फिल्मी बात बूझ तो पन्न सारी साथियन सतन ये खूबसूरत बात।
1: दीदी तूत प्रोग्राम
0: शौकी
1: प्रोग्राम शौकी
0: तो आकाशवाणी हिंद बाकी प्रोग्राम तोजान।
1: चलो
0: वालेकुम असलाम।

तो ये था आज का प्रोग्राम और ये थी आज के प्रोग्राम के नाम आखिरी फोन कॉल। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी आप सबको पसंद आया होगा। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि जिन दोस्तों की फोन कॉल्स रह गई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, नाराज ना हो, उनकी फोन कॉल्स इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम जरूर जोड़ेंगे, इंक्लूड करेंगे और अगले प्रोग्राम में वो साथी अपनी पसंद का नगमा जरूर सुनेंगे। तो दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, आप रखेंगे अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल और हमें रखेंगे अपनी नेक दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़।

समीन आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश। प्रोग्राम की मेजबान हैं रोहित मुश्ताक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम के अलावा FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश्र होंगे।

0: सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं

सुबह 10:30 पर लाइव प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मारूफ रग्बी प्लेयर महविश रशीद वानी। इनके साथ हम कलाम होंगी सकीना राठौर। सुहेल अजीजा साथी छकत रो पेश करेंगे सुबह 11:30, दोपहर 2:30 और सपहर 4:30। बजमिन स्वरास्त होगी 12:40 पर। प्रोग्राम की मेहमा है नजमा बशारत। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4:00 और गुजरी प्रोग्राम रोज की तरह नष्ट होगा 5:00।

जिनानामा शो का रात 8:30 पर शब 10 बजे गजलों का फरमाशी फोन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो महफिल गजल। समीन यह है तफसील हमारे कल नश्र होने वाले प्रोग्रामों की। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 208.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में इस वक्त शब के 11:15 हुए हैं। अब हमें आज की नशरियात बर्खास्त करने की इजाज़त दीजिए। कल सुबह के 6:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

0: मार्केट को थोड़ा सा फिर से एक बार देखें तो
1: जी
0: आज कैपिटल गुड्स की बात करें, रियल्टी की बात करें, इंडस्ट्रियल
1: जी
0: सेक्टर में बहुत गिरावट हमें देखने को
1: हाँ
0: नजर आई है। तो क्या ये अभी हाल फिलहाल किसी कमजोरी मान सकते हैं या फिर आगे भी इन सेक्टर्स में ऐसे ही दबाव बने रहने की आशंका आपको लगती है?
1: देखिए, कुछ सेक्टर्स में दबाव तो बनेगा। अब रियल्टी सेक्टर एक है जिसके बारे आपने बात की, और कैपिटल गुड्स हैं, पर खैर ये तो पोटेंशियली पॉजिटिव सेक्टर्स हैं। और रियल्टी सेक्टर का रिवाइवल अभी हाल ही में हुआ है,
0: जी
1: तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म वीकनेस होगा और आगे वाले दिनों में शायद ये ठीक हो जाएगा।
0: सुषमा, यू मेंशन्ड अबाउट ग्लोबल क्यूज, ऑयल मार्केट बीइंग वन ऑफ देम, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपनिंग अप, एंड क्लियरली दैट 60-डे विंडो इज वाइटल फॉर द फ्लो ऑफ ऑयल एंड गैस एंड इवन अदर गुड्स लाइक सल्फर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। व्हाट अबाउट स्टील? बिकॉज राइट नाउ एक्सपर्ट्स आर गिविंग द ओपिनियन लाइक योरसेल्फ दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ग्लट, अ सरप्लस ऑफ स्टील, व्हिच इज व्हाई द प्राइसेस ऑफ स्टील and steel products will come down. Nifty metal actually fell by 1.1% today. What are the surprise areas we're likely to see in the markets now?
1: As far as steel is concerned, there may be a glut of steel per se, but India needs certain specialized varieties of steel, which actually it is not manufacturing right now, and therefore it is having to import these. And these are the steels that are required for moving into the area of electric batteries and electrification, which we are seeking to do in terms of renewable energy. So there are, I mean, you may get steel. There are steels and steels. So specialized steels is something that India needs to probably right now import, and probably to manufacture ultimately, because that's an area where people are now talking about as being somewhat a weakness in our economy, and we have to look at ramp up manufacturing here.
0: Along with that, there is also moves to substitute copper with aluminium because aluminium is lighter and the design of manufactured components, especially in the EV space, is being looked at very seriously. That is another way of bringing down the price of copper, which has actually gone up because aluminium is still fairly affordable right now. So, do you see a lot of changes right now in terms of valuation in the metal sector?
1: Yes, definitely. I mean, metals is going to be a very, very important sector. I mean, you talked about copper, aluminum, all the metals right now in recent times, the prices have gone up because the requirement of all these metals in high-tech products, in components, whether it is, it may be silicon chips, you may need very tiny quantities of these metals, but these are required. And of course, copper prices have gone up. So, yes, there would be effort to try and seek alternatives, like in the case of aluminum. Aluminum is an area that India has sufficient production, and that would be certainly helpful if we can do that, we can replace copper with aluminum in a lot of manufacturing areas.
0: सुषमा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी गिरावट का रुख हमें देखने को मिला है, तो इस स्थिति में जहां पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पर?
1: देखिए, निवेशकों को ये देखना चाहिए, ये सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नहीं, पर खैर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू चिप शेयर्स नहीं है, ब्लू चिप कंपनीज नहीं है। इनमें उनको आगे की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है कि जिस इंडस्ट्री में है वो देखना है। और ये जो जे जो स्टॉक जो आपने चुना है, इसका इनकी जो मार्केट है वो कैसी है, और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिटेल में उनको देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर आप खैर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर ही एक कंपनी चुननी
0: एक सही
1: चाहिए।
0: समय है ये, सही समय है ये।
1: हाँ, देखिए हर समय सही है।
0: जी
1: हाँ, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि इंडिया मार्केट मार्केट लगता है कि अभी बढ़ने वाला है, सारे एनालिस्ट यही कहते हैं। तो ये पोटेंशियल हमारी मार्केट का बहुत ज़्यादा है,
0: जी
1: असेसमेंट यही चल रही है इस वक्त।
2: और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया कॉस्पी 4.9%

0: नीचे आ गया, जिसमें चिप शेयरों में बड़ी गिरावट आई। कारोबार के पहले सत्र में कॉस्पी 8% से अधिक गिर चुका था। ताइवान का ताइएक्स आज 2.3% लुढ़क गया। वहीं जापान का निक्केई 2.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक ने 1.6% की बढ़त दर्ज की। सुषमा जी, आज दक्षिण कोरिया कॉस्पी में जो गिरावट देखी गई, एक बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है अन्य मार्केट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का असर थोड़ा लंबा जाएगा या बस हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं इसे ये है?
1: देखिए, वो मुश्किल कहना है कि वो लंबा जाएगा कि नहीं, पर मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त एआई की जो सारी की जो समझ लीजिए कंफ्यूजन जो है एआई के ऊपर, और एआई खैर चिप्स उनके साथ एआई के साथ बहुत लिंक्ड है, एआई और चिप्स इकट्ठा ही जाता है, तो और साउथ कोरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सेंटर है चिप मैन्युफैक्चर के लिए साउथ कोरिया और ताइवान, तो हमें ये मेरे ख्याल में ये लंबा तो मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त का जो कंफ्यूजन है वो जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में खैर एआई स्टॉक्स तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन मैं बात कर रही हूँ चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड इश्यूज अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं कि कौन से चिप्स अमेरिका जाने देगा चाइना तक, और चाइना अपने कर्ब्स अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये टेंशन्स अभी चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल ये दीज आर sort of extending to other countries.
2: South Korea's Korea Exchange, the KOSPI that my co-anchor has asked you about, it plunged at 4.9%, and this is a very market where Samsung second quarter earnings have the revenue has exceeded Nvidia's 171 trillion US dollars is the revenue of Samsung in its second quarter. Its net profit has gone up by 19x. How does this happen in a market like Korea, developed country, where there is such a sharp correction?
1: But I don't think we should. We must remember that all markets are susceptible to these kind of things, because if there's any bad news, all markets like the Indian market are sentiment driven, and South Korea is no exception. So if there was some kind of perception that there would be some damage to the chip industry, to the chip sector, the problems that they are facing, which I talked about, both Korea, Taiwan, US and China, all this confusion that is going on and the problems that they are facing. So these are perceptions, and markets are generally sentiment driven. So yes, this can happen. And of course, Samsung, I mean, the profitability that you're talking about is really amazing, even better than Nvidia. For us, Samsung and companies like LG, the way they have entered the Indian markets is also so amazing that we sort of, the Indian consumer more or less thinks of Samsung and LG as Indian companies. They don't think of them as Korean companies. So this is the achievement of the Korean conglomerates. And definitely, as you say, profitability levels are amazing. But every market is sentiment driven, and these things happen everywhere.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात और उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है।
3: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रिजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से एकीकृत हो जाएगी। इससे कारोबार करना आसान होगा और यात्रा करने में भी सुविधा होगी। सुषमा, ये इस यात्रा से जुड़े मेरे दो सवाल है। पहला तो ये, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आर्थिक दृष्टि

0: से भारत को किस तरह से लाभ मिलने वाला। दूसरा, यूपीआई जो हमारी भुगतान प्रणाली लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, बहुत से देशों के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है इसे लेकर के, अब इसका आप भविष्य कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो पहला सवाल है कि इसमें जो आर्थिक इसके जो इकोनॉमिक टाई अप जो है इंडोनेशिया के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्रिटिकल मिनरल्स है, कृषि है, स्टील है और नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी इसमें आती है। और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस की भी बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो इंडोनेशिया के साथ हमारे खैर बहुत पुराने पुराने रिलेशंस हैं और बहुत लंबे अरसे से इंडोनेशिया के साथ हैं। और आगे की सबसे बड़ी चीज़ जो आपने दूसरा सवाल था, यूपीआई था, अगर हम यूपीआई के इंटरफेस के साथ हम इंडोनेशिया की पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो एक और देश हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। यूएई का खैर है ही है, मलेशिया के साथ हो गया है और मेरे ख्याल सिंगापुर के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन यूएई में मेरे ख्याल आप वहाँ जाके यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारा जो इंडिया स्टैक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है।
2: Local currency transactions, LCT, de-dollarization moves?
1: Yes, they are de-dollarization moves, certainly, because the more we try and utilize UPI, the more we try and use our own currencies, the less we have to rely on the dollar and the less we suffer the fluctuations of the dollar.
2: In more news, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS 5.0, launched in May this year, has crossed more than 4 lakh guarantees, with the guaranteed amount reaching over 1,55,000 crore rupees. MSMEs have emerged as the biggest beneficiaries of the scheme, with 98% of the guarantees issued going to the sector, while 82% of the total guaranteed amount has also been extended to MSMEs. The finance ministry said that the scheme is delivering fast, large-scale liquidity support to businesses affected by the West Asia geopolitical situation. And let's now move on to the crude oil market. Global crude oil prices rose today as reports of attacks on vessels near the Strait of Hormuz revived fears of supply disruptions. Brent crude was trading nearly 0.9% up at $72.61 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $69.01 per barrel when reports last came in. The 60-day window, which also includes reparations to Iran and of course the flow of oil and gas and other commodities through the Strait of Hormuz without toll being imposed, how do you see that holding up?
1: Well, we don't really know how well it's going to hold up, but the fact is that crude oil prices have come down. That's the most important thing for India. I mean, we import 85% of our requirements, and if the prices are coming down to $72 or $73 per barrel, as you know, today you're saying that they have gone up, but they've only gone up to about, you know, it's still less than $73 per barrel. And this is something that is manageable for India. And now the assessment is that going forward for this year, probably the average crude price is expected to be only about $77 per barrel. And next year it would be even less, maybe $74 or $75 per barrel. So the assessment now is that, you know, we have so much of crude oil in the market and demand is going down because people like, you know, countries like China are going in for electrification in such a huge way. Their demand is going down. And India also is now going to try very hard. We just talked about electrification of steel. So that is the going to be a problem for the oil industry, but good for India.
2: Let's move on to the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% down at 1,46,130 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.2% down at 2,31,220 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.8% नीचे आकर 1,45,798 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,31,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। सुषमा जी, सोने और चांदी पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
1: देखिए, अब सेफ हेवन का जो सिलसिला है, नॉर्मली इट्स अ सेफ हेवन मेटल गोल्ड, और जो अब वॉर का लगता है कि अंत होने वाला है, तो धीरे धीरे सोने का

0: भी दाम कम हो रहा है.
1: वंस अगेन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया हैज प्लेड अ रोल हियर. द यूक्रेन हैज अप द एंटी अगेंस्ट रशिया. डू यू सी दैट चेंजिंग?
0: Well, that's a war, I think, that is just doesn't seem to be going on in a very incremental fashion. And I think, unfortunately for Ukraine, the interest of the world is now focused on Iran.
1: Thank you so much, Sushma Ramachandran, for being with us on Market Mantra today.
0: Thank you.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in negative territory. And India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

गीत फिल्म के इस गीत में जहां लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी मीत को बुला रहे थे, इसे आपने सुना भी कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत के अंतर्गत और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल में मैं अभिनीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

फिल्म कभी कभी से मुकेश के गाए इस गीत को क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जोड़ के भी देखते हैं, जिन्हें ये काफी पसंद है और उनका आज जन्मदिन भी है। तो 7 जुलाई की तारीख बीतने से पहले हम उन्हें एक बार जन्मदिन की बधाई दे देते हैं और इसके साथ ही गीत मेरे मनमीत का ये सफर आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

0: पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्यबिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और साफ किया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के विपड्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में, अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में, जब नजरें मिली थी ना तो तुम भी मुस्कुराए थे।

अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, बस एक तेरा साथ मेरे जीने के लिए काफी है।

हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, तुम मांग कर तो देखो हम खुद को भी हार देंगे तुम्हारी चाहत में।

प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों को तुम्हारा इंतजार करे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्तु घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 110,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said the domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, the minister expressed confidence that the outlook for consumers

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

धड़कनों से पूछो कि वो क्या गाती हैं, धड़कन से पूछो कि वो क्या गाती हैं, इस दिल पर तो बस हर पल वो तुम्हारा नाम लिख जाती हैं।

सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, तुम्हें देख कलियों का मुस्कुराना तो बस एक छोटी सी निशानी है।

अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, चले आओ कि ये बेतनहाई डराने लगी है।

दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा गुजरे, दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे और जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें एक नई मुस्कुराहट दे जाए।

मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मैं तो हवाओं से भी तुम्हारा पता पूछकर मुस्कुरा देता हूँ।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमला

0: आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है, 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंगम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. Aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics

दोस्तों, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है और अब सफ़र है रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कुछ इन अल्फाज के साथ। न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, कि मेरा हर ख्याल मोड़ दिया तुम्हारी ही गलियों की तरफ।

एक छाता हो, भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। एक छाता हो, भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। फिर चाहे जमाना ठहर जाए, बस हमारी ये मुलाकात हो।

इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, चुपके से आकर मुझसे ही तुम्हारा पता पूछ रही हैं।

दोस्तों, हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है रात सुरमई।

तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, कि अब खुद से बात करूं तो यकीन मानो तुम्हारा ही जिक्र आता है।

तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, जितनी बार भी सुनो हर बार एक नया मुकाम देती हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अब वक्त आ गया है चलने का और 3:10 से हम राही का सफर लेकर आएंगे आपके साथ अर्जित पांडे। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों

0: लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डे में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his 2-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

रोका कई बार मैंने, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 3:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनूं।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात तो है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ पर सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

किसी भी चीज़ की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:43 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। जर्मनी के ब्रेमेन में बलूच नेशनल मूवमेंट ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान देने और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में निधि के दुरुपयोग से संबंधित चार आपराधिक मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि उसने बीआरओ, लद्दाख के एक सहायक अभियंता और कारगिल से दो श्रम आपूर्ति एजेंटों को गिरफ्तार किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम झारखंड के गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं द्वारा संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्यात जनजाति समुदायों और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने

भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए। जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती न करिए।

लता मंगेशकर जी की आवाज में तुम ही मेरे मंदिर। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

0: कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। चार बजकर 24 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

पे जिस तरह शाम का